FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का चिंतन। वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना का है।
3: समस्त सामाजिक बुराइयों के मूल तक पहुंचे तो एक ही समस्या नजर आएगी और वो समस्या है मैं का विकृत रूप। इस मैं का विकृत रूप क्या है? मैं जिंदा रहूं, दूसरे मरे मेरी बला से, और जरूरत हो तो दूसरों को मारकर भी मैं जिंदा रहूं। मुझे निरंतर अनुकूलता बनी रहे और जरूरत हो तो दूसरों की प्रतिकूलता देकर भी मुझे अनुकूलता मिले। जीवन के साधन मुझे मिले, सत्ता मेरी रहे। कोई भी मनुष्य यदि वो समाज में रहता है तो वो वास्तव में इस तरह स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी व्यक्ति समाज से पृथक कैसे हो सकता है? सेंस ऑफ सेपरेशन, मैं दूसरों से विशिष्ट हूं, पृथक हूं, यही विकृति मैं की भ्रांति है। इस भ्रांति की बुराई क्या है? व्यक्ति समझता है मैं साध्य हूं और दूसरे साधन है, मैं सजीव हूं दूसरे निर्जीव हैं, मैं दूसरों का साधन की तरह वस्तु की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसे इस तरह समझें, हमने अपने मैं की भ्रांति में अपने पर्यावरण का साधन के रूप में कैसा इस्तेमाल किया? फिर आंख खुली तो समझे कि अपनी नासमझी में हम कितना नुकसान झेलते रहे। तो आंखें खुली रखकर हम अपने मैं को संस्कार प्रदान करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर करता है, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, आर्थिक परिवेश हो, राजनीतिक परिवेश हो, सांस्कृतिक परिवेश हो या प्राकृतिक परिवेश। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर करता है और इनके बीच में निरंतर आदान प्रदान चलता रहता है। पूरे ब्रह्मांड में दिन रात आदान प्रदान का ये यज्ञ चल रहा है। हम देख नहीं रहे पर ये यज्ञ निरंतर चल रहा है। यज्ञ वो कर्म कांड वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ जैसा कि गीता में कहा गया है, यज्ञ से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से धुआं, धुएं से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न उपजता है और अन्न से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे मनुष्य की उस देह का निर्माण होता है जो यज्ञ करता है। सारे ब्रह्मांड का परस्पर संबंध यज्ञ है। हम एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ होम करते रहते हैं। सूर्य यज्ञ करता है, अपनी किरणों का समुद्र में होम करता है, उस होम से बादल बनते हैं। यही है एक दूसरे के प्रति परस्परता का भाव, समर्पण का भाव, संवेदनशीलता का भाव, जिससे संस्कृति बनती है, राष्ट्र और विश्व मजबूत होता है। एक किसी राजा के यहां वीणा रखी थी, असाध्य वीणा, उसको कोई साध नहीं सकता था। एक फकीर उसे साधने आता है, वह वीणा को गोद में लेकर बैठ जाता है, एक यंत्र की तरह नहीं बल्कि एक जीवित बच्चे की तरह। अब वो उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने लगा कि यह वीणा बनी कहां से, इसकी लकड़ी किस वृक्ष से आई, वो वृक्ष कहां उगा है, उसका इतिहास क्या है, कितने हजारों पक्षियों ने उस पर रैन बसेरा लिया, कितने यात्री उसकी छांव में बैठे। सारी चीजों पर वो एकाग्र ध्यान लगाकर बैठ जाता है। पेड़ की शाखाओं, उसके तने और जड़ों की गहराई तक उसका ध्यान पहुंचता है और इस ध्यान में वो तल्लीन होकर समाधिस्थ हो जाता है। राजा और दरबारी अधीर हैं। आया तो था वीणा साधने पर लगता है सो गया। अनायास उसकी अंगुलियां चलती हैं और ऐसा संगीत झंकृत होता है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें भी अपने परिवेश की असाध्य वीणा के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, इससे उसके साथ सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। कोई जोर, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। यदि कुछ सायास होगा तो वो चतुराईपूर्ण व्यवहार कुशलता होगी, जिसमें वो विकृत में खड़ा होगा, आत्ममुग्ध, अकेला। जबकि पारस्परिक निर्भरता और पारस्परिक उत्सर्ग की भावना से जिस संवेदनशीलता का उदय होगा, उससे मनुष्य को अपने संपर्क में आने वाले मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों से ही नहीं अपितु वृक्ष, लता, नदी, नाले

0: झरने और आकाश आदि समस्त वातावरण के साथ तादात्म्य अथवा एकता की अनुभूति का बोध होगा, जो अनवरत फलती रहेगी और सबके लिए मंगलकारी होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना का था। आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर अब प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना से, तो लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में देशगान। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदना में आइए अब करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का, इस गणेश वंदना के साथ जिसे आवाज दी है रमेश रमन ने।

भक्ति द्वारा अपनी व्यक्त सत्ता को भगवान की व्यक्त सत्ता में मिलाना मनुष्य के लिए जितना सुगम है, उतना ज्ञान द्वारा ब्रह्म की अव्यक्त सत्ता में अपनी व्यक्त सत्ता को मिलाना नहीं। इस संदेश के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये भजन।

इसी के साथ श्रोताओं, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। एफएम 14.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिनांक 18 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय संबंधी जानकारी।

प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी शीर्षक गीत। कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह के 7:10। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:20 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर और शाम 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम के 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चौंसारी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे सुनील कुमार। कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह के 7:30।

प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रस्तुत किया जाएगा सुबह के 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी, ये RNU देहरादून की प्रस्तुति होगी। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह के 9:05 पर। AIR न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10 बजे, दोपहर 12:10, अपराह्न 3 बजे और शाम 4 बजे।

0: सुबह 10:02 पर प्रस्तुत करेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर और रात 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आज आप सुनिएगा विविध कलाकारों के स्वर में कुमावनी लोकगीत। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रस्तुत किया जाएगा सुबह के 11:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर सुनिएगा रॉबिन कर्माकर के स्वर में भजन। दोपहर 12:30 पर प्रस्तुत करेंगे हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत। आज के अंक में होगा फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी। दोपहर 1:30 प्रस्तुत किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम गाने नए तराने सुनिएगा अपराह्न 3:02 पर। श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः।

0: अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य सुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे। चुके हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हम दिल दे चुके सनम से लिया है। कविता कृष्णमूर्ति, उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन की आवाज़ है। गीत और संगीत इस्माइल दरबार का है।

आइए अगला गीत सुनते हैं। हम तुम फिल्म का शीर्षक गीत जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है जतिन ललित का।

0: शीर्षक गीत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह।

पहले मुख्य समाचार। मेरठ से ऋषिकेश तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त, जल्द होगा सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन।

0: और अब समाचार विस्तार से। मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा की विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बीच सहमति बन गई है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट
1: के तहत मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक बिछाया जाएगा जो मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। प्रस्तावित 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि NCRTC नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परियोजना को अपनी सहमति दे दी है। इस रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के साथ साथ दिल्ली आने जाने वाले लोगों को आधुनिक परिवहन का नया विकल्प मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा में सड़क मार्ग से लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जबकि नमो भारत ट्रेन के संचालन के बाद यह सफर करीब 2.5 से 3 घंटे कम में पूरा किया जा सकेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और जनसुविधा परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, सड़क निर्माण, पर्यटन, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत मायापुर में फायर स्टेशन के लिए 50 बिस्तरों वाले बैरक निर्माण तथा विभिन्न नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा कोटद्वार में LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना, श्रम न्यायालयों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय और अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग कर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय से नीतियों का निर्माण होता है, जन कल्याणकारी योजनाओं को दिशा मिलती है और प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार होती है। श्री धामी ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में सचिवालय परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर कल रात पर्यटकों से भरे एक टेम्पो ट्रैवलर के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के समय वाहन में 29 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल तथा दुर्घटना स्थल के मार्ग पर घायलों के उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। वाहन में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी बताए जा रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए शीघ्र ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
3: विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को राज्य पूरा कर रहा है और प्रदेश की साक्षरता दर वर्तमान में 98% से अधिक है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लेकर निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों को विशेष रूप से शामिल किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा अब तक मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को मिल चुका है। उत्तराखंड इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का छठा राज्य बन सकता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जिले में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों तथा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर योग एवं स्वस्थ जीवन शैली का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। सचिव गृह शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों को प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। देहरादून में आयोजित बैठक में सचिव गृह ने अगस्त माह के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारात्मक व विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए के साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को नागरिक केंद्रित पुलिसिंग एवं EFIR को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। साथ ही 60 एवं 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा में FIR की विवेचना एवं निस्तारण में सुधार लाने को कहा गया। इसके अलावा सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकत्रित कर एक डेटा, एक प्रविष्टि के सिद्धांत को लागू करने तथा जेल एवं कारागार विभाग के बंदियों की 100% न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्र को विकसित, समृद्ध और सशक्तशाली बनाने के लिए की राह में युवाओं का योगदान अहम है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की और विश्वास के साथ देख रहा है। ये बात उन्होंने उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युवा संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विचारों का मतभेद लोकतंत्र की सुंदरता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता हमारी समान पहचान होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मेरठ से ऋषिकेश तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा का विस्तार, मार्ग प्रशस्त, जल्द होगा सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर सुबह के 7:30 हो रहे हैं। समय है पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत का। आज कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जौनसारी लोकगीत। गायक कलाकार हैं सुनील कुमार। इनके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर मुकेश कुमार, ढोल पर प्रेम दास, दमाऊं पर हेमचंद, बांसुरी पर नीरज सिंह, हारमोनियम पर राहुल वर्मा और रणसिंघा पर माया राम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इसे जौनसारी लोकगीत के साथ।

0: हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं शैल संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील कुमार के स्वर में जौनसारी लोकगीत। आगे बढ़ते हैं और इनकी आवाज़ में अब सुनते हैं मंगशीर भगवाल गीत।

0: श्रोताओं, इसे जौनसारी हारोल गीत के साथ ही शैल संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे सुनील कुमार, इनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर मुकेश कुमार, ढोल पर प्रेम दास, दमाओं पर हेमचंद, बांसुरी पर नीरज सिंह, हारमोनियम पर राहुल वर्मा और रणसिंघा पर माया राम। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। 8 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
8: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
3: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
9: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
10: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
11: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
9: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
12: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
9: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
13: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
14: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
15: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
3: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 177 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to

नमस्कार देहरादून श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके इस पसंदीदा सूचना परक कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार देहरादून। और आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, कहते हैं कि रात की पेशानी से जब ओस के मोती ढलते हैं, तब कहीं जाकर सुबह के ख्वाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद की एक लौ जलाए रखिए दिल के आंगन में। सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन उजाले असल में अंदर से होते हैं। है ना ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात कि जो सुबह है, ये सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि ये उन सपनों की वापसी भी होती है जिन्हें हम रात भर अपनी पलकों में सहेज कर रखते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से नमस्कार देहरादून का आज का ये अंक, और आज कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ मिताली पुनेठा। श्रोताओं, इस खूबसूरत से विचार के बाद ही हम आज कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या आज खास हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में। अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर बात करेंगे जिंदगी की, कुछ मुस्कुराहटों की, कुछ यादों की, कुछ प्रेरणादायक बातों की। पलटेंगे इतिहास के पन्नों से कुछ रोचक घटनाएं, जानेंगे आज की ताज़ा खबरें और सुनेंगे आपके लिए चुने हुए कुछ चुनिंदा मधुर गीत। तो अपने इस सुबह की महफिल में हमारे साथ बने रहिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी बात कह रहे हैं, जो है, जिंदगी हर रोज़ हमें एक कोरा पन्ना देती है, अब उस पर कहानी लिखनी है या शिकायत, ये फैसला हमारा अपना होता है। तो इस थॉट के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं पहले गीत की तरफ। इस गीत का आनंद लीजिए और फिर बात करते हैं इस गीत के बाद।

शुक्रिया ज़िंदगी। फिल्म आशाएं से ये जो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे ना, ये अपने आप में इतना वाजिब है कि अगर हम इस गीत को सुनें और इसके जो बोल हैं उस पर ध्यान दें तो ये ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफ़ी हमसे साझा करता है और ये हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है। इसीलिए इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं आज के इस अंक में। लेकिन उससे पहले श्रोताओं, एक सवाल आपसे पूछना है कि हम हर सुबह शीशे में अपना चेहरा तो देखते हैं ना, सब देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपना जो ये चेहरा है इसके अलावा हमने अपने मन का चेहरा देखा है? अब आप कहेंगे मन का चेहरा कैसे देखते हैं, तो अगली बार एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। जब भी आप शीशा देखें तो शीशा देखते वक्त, अपने आप को देखते वक्त ये सवाल करें कि क्या आप को अपने चेहरे में कुछ अंतर दिख रहा है? यानी कि वो अंतर कैसा होगा? वो अंतर कुछ इस तरह का होगा कि क्या मैं जैसा खुद को कल देख रहा था या परसों देख रहा था या देख रही थी, तो आज मैं जो खुद का चेहरा देख रहा हूँ वो कल से बेहतर है, परसों से बेहतर है, या उस चेहरे के पीछे जो मैं हूँ, जो मेरा असली इंसान है, क्या वो कल से या परसों से ज़्यादा बेहतर आज है? बस इस सवाल का जो जवाब आप ढूंढोगे ना शीशे में खुद को देखते हुए, तो आपके चेहरे के जो भाव बनेंगे वो आपको दिखा देंगे कि आपके मन का चेहरा असल में ये है। अगर जवाब हाँ होगा तो यकीन मानिए कि आपका दिन, आपकी सुबह बेमिसाल है। और अगर इसका जवाब मान लीजिए ना होता है तो ये बिल्कुल भी ना अफसोस करने वाली बात नहीं है, शिकायत करने वाली बात नहीं है, बल्कि इस ना वाले जवाब को आप ऐसे देखना कि आपके पास जो आज का दिन है, आज की सुबह है, वो एक नया अवसर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, जो वक्त है ये कभी रुकता नहीं, जैसे कल नहीं रुका, परसों नहीं रुका, वैसे ही ये आगे भी नहीं रुकेगा। आज हमारा जो प्रेजेंट है वो कल हमारा पास्ट बन जाएगा, आज जो हमारा फ्यूचर है वो कल हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। लेकिन जो ये समय है ना, ये अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ते हुए जाता है जिनको हम कहते हैं इतिहास। तो आइए पलट के देखते हैं इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है आज के दिन। तो श्रोताओं, 18 जून ये जो तारीख है ना, ये हमारे देश और विदेश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं अपने अंदर दर्ज करके बैठी है। बात करें पहली घटना की, तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी एक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आज ही के दिन 1858 में ग्वालियर के युद्ध में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1946 में आज ही के दिन यानी कि 18 जून को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मडगांव में पुर्तगालियों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसकी स्मृति में आज का दिन गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून 1956 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पश्चिम बंगाल विधानसभा की स्थापना की गई। और 18 जून 2009 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का आधिकारिक लोगो जारी किया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के तौर पर विदेश में क्या क्या घटित घटनाएं दर्ज हैं 18 जून की तारीख में। तो 18 जून 1815 को यूरोप के इतिहास में निर्णायक वाटरलू का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटेन और सहयोगी सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को अंतिम रूप से पराजित किया। आज ही के दिन 1981 में प्रसिद्ध अमेरिकी मेडिकल पत्रिका ने पहली बार एचआईवी एड्स के मामलों की आधिकारिक पहचान और रिपोर्टिंग की थी। और आज ही के दिन 1983 में अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से सैली राइड अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। इसके अलावा एक दो चीजें और हुई जिन्होंने आज के दिन को रोचक बनाया, जो थी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, यानी प्रकृति के बीच समय बिताने और परिवारों को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु इस दिवस को बनाया गया। इसके साथ ही हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम मनाते हैं, जो कि नफरत भरे भाषणों से निपटने और जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। तो देखा आपने,
ये जो इतिहास है, ये इतिहास हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी एक छोटे से विचार से ही तो शुरू हुआ था। तो कौन जानता है कि आज आपके मन में आने वाला कोई विचार भी कल इतिहास बन जाए और कुछ ऐसा महान कर जाए जो इतिहास में दर्ज हो जाए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में, जो कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब समय हो चला है देश विदेश की हलचल पर एक नज़र डालने का, तो आइए सुनते हैं कि क्या हैं आज की ताज़ा खबरें अखबारों के हिसाब से। तो पहली खबर ले रहे हैं जो इस तरह से है कि 16 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप व पीएम मोदी में द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप से बोले मोदी, भारतीय नाविकों की सुरक्षा जरूरी, स्वतंत्र नौवहन के लिए साथ करें काम। ट्रंप बोले, दोनों देशों में व्यापार समझौता पूरा होने के बेहद करीब, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर सुनवा रहे हैं आपको। ये खबर है, G7 सम्मेलन से इतर EU अध्यक्ष, ब्रिटिश कनाडाई पीएम समेत वैश्विक नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। EU कनाडा से व्यापार समझौता इसी साल, ब्रिटेन संघ CETA 15 जुलाई से होगा लागू। कहा, व्यापार, निवेश, रक्षा, IT में मिलकर काम करेंगे भारत और जर्मनी। अगली खबर तक जा रहे हैं, ये खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक। कहा, गांव में 27 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे, प्रस्तावों पर लगी मुहर। अगली खबर, समस्याओं से परेशान सदस्यों ने अधिकारियों पर दागे सवाल। बिजली, पानी, लूनीवी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूछे तीखे सवाल। अगली खबर ले रहे हैं, डाक विभाग की ओर से 30 जून को त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, BPL और डाक बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई डाक अदालत में की जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतें 29 जून तक संबंधित अधिकारी तक भेज सकते हैं। हर शिकायत के लिए अलग आवेदन पत्र देना होगा, साथ ही इस पर स्पष्ट रूप से डाक अदालत के लिए लिखा होना चाहिए। अगली खबर श्रोताओं ले रहे हैं कि 24 जून को देहरादून में अमर उजाला संवाद उत्तराखंड का आयोजन करने जा रहा है। सतत विकास की थीम पर आयोजित ये संवाद उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन का मंच बनेगा। संवाद में राजनीति, सुरक्षा, खेल व मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप और अभिनेता राकेश बेदी समेत एक दर्जन से अधिक वक्ता होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। और ये आखिरी खबर ले रहे हैं जो कि है कि दून में कई जगह बारिश की बौछारों के बाद से मौसम सुहावना बना हुआ है। आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदान के कुछ इलाकों में बारिश के हल्के आसार हैं। ये थी आज के अखबार में जो दर्ज हैं वो कुछ महत्वपूर्ण खबरें श्रोताओं, और कार्यक्रम में इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
4: श्रोताओं नमस्कार। देहरादून का जो ये आज का अंक था, ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं कि हर मुलाकात की एक खूबसूरत बात ये होती है, वो अपनी अगली मुलाकात की उम्मीद छोड़ जाती है। आज की इस मुलाकात में हमने साथ साथ में कुछ बातें की, कुछ यादों के पन्ने पलटे, इतिहास की गलियों में भी घूम आए, आज की हलचलों और खबरों पर नज़र डाली और संगीत के सुरों के साथ इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की। उम्मीद है कि नमस्कार देहरादून का आज का ये सफर आपके दिन की शुरुआत में कुछ मुस्कानें, कुछ सकारात्मक विचार और कुछ अच्छे एहसास जोड़ पाया होगा। श्रोताओं जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम मंजिलों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास बिखरी होती है। आज जब अपने दिन की ओर बढ़ें तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिएगा, अपने प्रियजनों के लिए भी निकालिएगा और उस प्रकृति के लिए भी जो बिना किसी अपेक्षा के हमें हर दिन कुछ नया दे जाती है। कल इसी समय आपसे नए विचारों के साथ मुलाकात करेंगे, नई ऊर्जा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में हर दिन एक नया कदम बढ़ाते रहें। नमस्कार देहरादून।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये RNU देहरादून की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में मैं जयवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के विकास, संस्कृति, आस्था, पर्यटन, जनसरोकार और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी प्रमुख खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की जिले की चिट्ठी आई है चमोली से। आलेख है सुरेंद्र सिंह का। आइए जानते हैं कि बीते दिनों चमोली जिले में क्या कुछ खास रहा। चमोली जिला इन दिनों आस्था, पर्यटन और विकास गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। एक ओर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या पहुंच रही है, तो दूसरी ओर सीमांत क्षेत्रों के पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। फूलों की घाटी में पर्यटकों की बढ़ती आमद, नीति घाटी में आयोजित अल्ट्रा रन, रुद्रनाथ यात्रा की तैयारियां और सीमांत गांव माड़ा में विकास कार्यों की रफ्तार चमोली को नई पहचान दे रही है। इसी के साथ प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन अभियान, आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्यों में भी उल्लेखनीय पहल देखने को मिली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जिले की चिट्ठी। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 14 लाख तक पहुंच गई है। 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार धाम पहुंच रहे हैं। बेहतर सड़क संपर्क और यात्रा व्यवस्थाओं के चलते इस बार यात्रा सीजन में नए रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती यात्रा से स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय और पर्यटन गतिविधियों को भी लाभ मिल रहा है। वहीं आस्था की यह यात्रा आगे बढ़ती है श्री हेमकुंड साहिब की ओर। चमोली जिले में स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए विधिवत खोल दिए गए थे। कपाट खुलने के बाद पहले ही दिन 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेका। यात्रा आरंभ होने के बाद से अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चमोली जिले की पहचान केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य भी देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिल रही है। इस वर्ष अब तक 2600 से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक घाटी का भ्रमण कर चुके हैं। घाटी में इन दिनों विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फूलों की घाटी में जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है और हर वर्ष हजारों प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं। पर्यटन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा में सीमांत नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन भी चर्चा का विषय रही। 3 दिवसीय इस साहसिक आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में धावकों ने हिस्सा लिया। समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नीति घाटी को साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सीमांत क्षेत्रों के विकास की बात करें तो केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांव माणा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांव में सड़क, पर्यटन सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी, पेयजल व्यवस्था और स्थानीय उत्पादों के विपणन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन विकास कार्यों से पर्यटन बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। चमोली में प्रशासनिक सक्रियता का एक और उदाहरण विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान देखने को मिला। अभियान के तहत 3 मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत वितरण और डिजिटलाइजेशन कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया। जिला प्रशासन ने इसे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनत का परिणाम बताया है। अब बात राहत और बचाव कार्यों की। बद्रीनाथ क्षेत्र में ट्रैकिंग पर निकला 15 सदस्य दल खराब मौसम और घने कोहरे के साथ रास्ता भटक गया था। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और आईडीपीपी की संयुक्त टीम ने कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाकर सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। दल में शामिल एक बुजुर्ग सदस्य को विशेष सहायता देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ये थी चमोली जिले में से विकास, आस्था, पर्यटन और जनसरोकारों से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें, जिन्हें हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने संकलित कर भेजा। इसी के साथ आज के जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है। अगले अंक में फिर किसी अन्य जिले की चिट्ठी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी जयवीर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
0: अभी आपने सुना जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम आरएनयू देहरादून की विशेष प्रस्तुति थी। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्मी गीतों का ये सफ़र शुरू किया आरती मुखर्जी और जसपाल के स्वर में फिल्म गीत गाता चल से इस गीत के साथ, जिसका गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। श्रोताओं, कभी लगता है कि जिंदगी ना एक कहानी है और कभी लगता है एक अधूरा सा ख्वाब। कुछ पल ठहर जाते हैं याद बनकर, कुछ लम्हे गुजर जाते हैं हवा की तरह, लेकिन जो दिल में रह जाए वही तो असली जिंदगी है। इन्हीं एहसासों को सुरों में ढालता एक कालजयी गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है शोर।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में हम सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो खुशियों में भी साथ चले और मुश्किल राहों में भी हाथ को थामे रखे। आइए सुनते हैं प्यार, विश्वास और साथ निभाने के एहसास से सराबोर ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई और इस गीत के की रचना की है गुलशन बावरा ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। गीत को बोल दिए थे संतोष आनंद ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को शिकायतों में नहीं शुक्राने में जीना चाहिए। हर दिन अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है, हर मुलाकात कोई ना कोई याद छोड़ जाती है और हर धड़कन हमें ये एहसास दिलाती है कि ये जीवन अपने आप में एक अनमोल उपहार है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं भावनाओं को सुरों में सजाता हुआ फिल्म सौतन का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। शब्द रचना सावन कुमार की है और संगीत उषा खन्ना का है।

जिसे मैंने अपनी दुआओं में रखा है, जिसे मैंने अपनी दुआओं में रखा है, क्या वो मेरी तकदीर में भी लिखा है? आइए सुनते हैं मोहब्बत, इंतजार और नसीब के इस खूबसूरत से संगम को बयां करता हुआ अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नसीब से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर kg की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: जिंदगी अनमोल है दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं ओवर स्पीड गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन
4: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म मेरा साया से। गीत को बोल दिए थे राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत था मदन मोहन का। अब सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में फिल्म लव स्टोरी से ये गीत, जिसकी रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कहते हैं दिल की दुनिया बड़ी अजीब होती है। कभी एक मुस्कान से आबाद हो जाती है तो कभी एक याद से वीरान। मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो खुशी भी देती है और कभी कभी एक मीठी सी कसक बन जाती है। इन्हीं एहसासों को सुरों में ढालता है ये गीत, और ये है आज के सदाबहार फिल्म संगीत का आखिरी गीत। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में फिल्म कर्ज से ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मेरठ से ऋषिकेश तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त, जल्द होगा सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह सचिव शैलेश बगोली ने राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों के शत प्रतिशत अनुपालन के निर्देश देते हुए अगस्त माह के अंत तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। पौड़ी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर पर्यटकों से भरे एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली से एक आरोपित को हथियारों के समेत गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार व्यक्त किए हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नन्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहाँ एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहाँ बच्चा प्यार, स्वीकार और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्ते को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं।
हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांटकर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोच रखता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं, ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:12 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये पहला गीत आप तक पहुंच रहा है एमएम किरावनी और पलक मुश्चल के स्वर में। गीतकार हैं मदन कार्की और संगीत है एमएम किरावनी का।

आप सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में फिल्म बागबान से ये गीत, जिसकी रचना की है समीर ने और जिसे सुरों से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था दिल का रिश्ता। गीत को बोल दिए थे समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत। कुमार सानू की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दम लगा के हाईशा। गीतकार वरुण ग्रोवर और संगीत अनु मलिक का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बीच सहमति बन गई है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक बिछाया जाएगा जो मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि NCRTC भी अपना नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुका है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उद्देश्य से पौड़ी जिले के पदमपुर मोडाढाक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बहुद्देश्य समाज कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामान्य एवं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्राप्त लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक रितु खनोड़ी भूषण ने कहा कि सरकार जरूरतमंद व्यक्तियों तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कोटद्वार में उनका एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, आज कोटद्वार में 110 व्हील चेयर और 100 करीबन नॉर्मल व्हील चेयर और 10 उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जहां एक तरफ सेना के लिए और देश के लिए अनेक उपकरण वो बना रहे हैं।
1: इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और जन सुविधा परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, सड़क निर्माण, पर्यटन, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी मीडिया और संचार रणनीति की तैयारियों के आकलन के लिए कल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 3 सदस्यीय दल रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण करेगा। आयोग के उपनिदेशक अपूर्व कुमार सिंह के नेतृत्व में आने वाले दल में सहायक निदेशक गौरी एस और वरिष्ठ वीडियो संपादक रंजीत श्रीवास्तव शामिल हैं। दल निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेगा। इस दौरान आयोग की नई पहलों की जानकारी भी दी जाएगी और युवा मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने, निर्वाचन साक्षरता को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखने तथा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के विकास भवन सभागार में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के लगभग 103 किसानों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी रितु कुकरेती जुयाल ने कहा कि रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के अत्याधुनिक प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का आह्वान करते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स STF ने एक आरोपी को उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक पिस्टल, एक राइफल, 17 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी शस्त्र लाइसेंस और 1 फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:35 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में कुमावनी लोकगीत।

0: हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में कुमावनी लोकगीत। अभी आपने सुना मीना बिष्ट के स्वर में कुमावनी छोड़ा। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला कुमावनी लोकगीत विमला पंत के स्वर में।

0: इसी के साथ लोक संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के स्वर में कुमावनी लोकगीत।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रमों की खूबसूरती बनती है आपकी प्रतिक्रिया से, आपके सुझाव से, आपकी आलोचना से। तो इस संबंध में आप हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैसेज लिख सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर वाला हमारा जो फरमाइश वाला नंबर है वही है, जी हाँ 7088-00-0731 पर। और फिलहाल इस नंबर पर हमारे श्रोताओं की मिल रहे हमें मैसेज और सुन पाते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। और श्रोता हमारे जो मैसेज लिख रहे हैं वो हैं, आप हैं साधु शह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्र कला रेवाड़। साथ ही फरमाइश लिखते हैं नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पीहोर दिया आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित और रबीर चौरसिया। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसानी, उषा ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीब और दानिश अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, मुकेश और कंचन की आवाज़, फिल्म का नाम धर्मात्मा।

0: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। साथ ही फरमाइशों में लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से हैं आप हैं बोध राज खोरवाल, कमला रानी गीतिका और साथ में हैं भानु प्रकाश। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खान और साथ में इरफान खान। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं गांव राम सहायवाला जिला सहारनपुर से नामदेव गुर्जर, दिव्यानुष्का शिवानी, नेहा सविता, संदीप बीरमपाल और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है जमुनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मीला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और साथ में है आर्य कुमार, करोला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इनके परिवारजन, कलानौर से ही नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता लिखते हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका दली, पुनावले पुणे से अजय सोनबना, करिश्मा अविका, विशाखा सोनबनी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव ध्यांगला जिला कुरुक्षेत्र से मांगीराम सैनी, यसी सैनी, नेविश सैनी, डिंपल सैनी, देवांश और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गांव चांदूर बिस्वा जिला बुलढाणा से किशोर वानखेड़े, उषा और विशाल वानखेड़े, गांव राजूर तहसील मोताला से राज गवई और राजवीर गवई। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और साथ में हरिदान खुराना, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम शुभम, देवी किशन, भावना मन, मानस और कनिका पटेल। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और मुकेश के, फिल्म का नाम है आह।
1: आया उसे एक बात बताइए,

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम वर्षा फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। नजीब अब्बास से हैं राधिका प्रभा रानी, साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता, साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने मैसेज लिख भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और साथ में हैं मधु नायक। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सकपाल, आशा सोनिया और साई राज और विशाल सकपाल। साथ ही फरमाइश लिखते हैं राजकोट से जमीन कुमार जैन, हेतल कृष्ण और राकेश जैन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से मे वैद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान अल्लाह, फरहान, समय, राजमीन गुड़िया। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मोनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है आप हैं गोकुल चौक गंगजला शहर सबिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमारिया रानी और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टेकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और साथ में आशीष विश्वकर्मा। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिद्दा, जसपी सीता और गीता। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की आवाज। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रोग्राम के लिए अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। आप विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदना आदेश कुमार काली और साथ में प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाडोकल मल्होत्रा, इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं। गांधी रोड गंज डिडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद जावेद, मुन्नी सलमानी और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका, सुशांत नायक और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। झारखंड बगनपुर से मैसेज श्रोता लिखते हैं अब्बास आलम, अमजद अली और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। आप हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी और जेमिन भावसार, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं। आप हैं वार्ड 16 इंदौर से हैं रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, नंदिनी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। गांधी चौक पाड़ में राजस्थान से बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण तरुण और साथ में ही प्रतीक चौहान, और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। पदमा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति सुरभि अश्विन, मंगला बहन और साथ में राजेंद्र जी शाह। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोम दत्त कैर और ज्योति रानी, गुरमीत कौर मनु और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवाना और साथ में अब्दुल्ला आज़ाद, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जय श्री महतेरे, अंजलि और साथ में इनके बहुत सारे मित्र, और ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं। आपने मैसेज लिख भेजा है। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाडी, विशाल शालिनी और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्षा फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। मजनू कटीला से कमल बालोजा मधु सागर बालोजा सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और साथ में है माही मलिक। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं।

मनाली, हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और साथ में रोजस भाई, चंडीगढ़ सिटी से शेफाली शेफी, डेविस बिमला और सतीश अनेजा, साथ ही नजीबाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा और ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण, श्री निका, श्री निजा, साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। बुलढाणा वड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई दीपाली और साथ में श्लोक कुमार, और इसी गीत को सुनना चाहा आपने, मैसेज लिख भेजा है। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नील शर्मा, जयवीर सिंह और साथ में इनके डॉक्टर अमनदीप, गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर और करिश्मा। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी है। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और साथ में भूमिका अरोड़ा, ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और साथ में नफीसा परवीन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदूरकर, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को फिल्म का नाम है दोस्ताना।

कार्यक्रम का यह अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर रामपुर गांव दिव्या नगला अम्बेडकर पार्क के पास ही आकाश गौतम, सौरभ गौतम, कपिल भारती, गौतम, करीना और साथ में स्वाति, पौड़ी गढ़वाल से हैं रमा रावत, रामगंज खंडवा से विजय बहुबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू, बोनू रानू, पेंटर बाबू और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। राहट गांव को पमरावती से हैं हर्ष रामेकर, दिलीप अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर, साथ में रामेकर परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से, भाई रफर साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमानाज मंसूरी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना ताई, हीरावन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि और साथ में प्रतिभा। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, फूल वाले दुख नारानी, जूह इकबाल, इमरान अहमद और साथ में इनके परिवारजन। मसूरी रेडियो लिसनर क्लब मुंगेसापुर से आप हैं कानपुर देहात से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरूनी शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलना पलक लुबना और यश मंसूरी। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और साथ में आयान बाबू। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम सूरज।

समय 11:33 हुई है। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के 13 दिन केंद्र से। कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। शांति निवास लहेगांव रेलवे जिला अमरावती से कुमारी कल्पना कुराड़े, वंदना आशीष कुराड़े और साथ में दीपक कुराड़े। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, गांव कष्ट बुजुर्ग अमरावती से पवीन हागुनी, योगिता प्रियाली हागुनी, पार्थ और साथ में

इनका पूरा हागोनी परिवार। साथ ही मैसेज है, हमारे श्रोता लिखते हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आप हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बनिया और शौर्य और साध में देश और इसी गीत को सुनना चाहा है। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राहिब, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु उस्मान अंसारी और साथ में कलीम अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं वाइल्ड फील्ड बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्य दुभूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनुला श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू योगिता, रजन साहू और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश शर्मा, मंजू वर्मा, निशान कौशिकी, दीपाली युवान और साथ में हैं आर के राजा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं गांवर डागर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, साथ में है करमजीत कौर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है दस नंबरी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: प्रोग्राम बर्ड्स ऑफ फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। रेलवे रोड गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, शिव बेगम, शबनम अनवर, नजमा बेगम, साथ में भाभी सरिता गौतम। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरल कर रतनमाला और साथ में आराध्या। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है डुमराव से राजवली अंसारी, बेगम शबनम और रस्मा राज, जेलोड बक्सर से राजेश डी अंसारी, फातिमा राज और साथ में असलम। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल कपिल, किरण मेहरा और साथ में कुणाल मेहरा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमर दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई सुचा सिंह पाठक, साथ में विनोद पुरी, जयपाल यादव और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार, सीना रेखा रिवेश, अजय कुमार, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और साथ में इनके परिवारजन। पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रियाजिया टूशी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता गाँव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलगीत कौर, आरती रानी राघव, हरमन और साथ में इनके परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खाना से नबानु अली जनाब और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं गांधी बाग कोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़, फिल्म का नाम दीवाना।

कार्यक्रम बट से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के 13 दिन केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। कस्बा गुन्नर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। साथ ही मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान और जानबान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, साथ पी एन के बहुत सारे मित्र। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, पांडर कवड़ा से निबुरानी उषा अनुश्री और साथ पे धनश्री बुरानी। बल्लाल शाह से सूरज लोडी, प्राची और एकलव्य। हरियाणा के गांव सांतड़ी से ईश्वरदयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज, भव्य अमित कुमार पुनीत और साथ में हिमांशु जी। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, कस्बा चिलकाना से नदी मंसारी, आयशा, आजिम, शानालिया, अहम अंसारी और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सूफियान, अनस, आयजा और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं बुलंदशहर से नरेंद्र कुमार डूम, सरिता, प्रभा डोली और साथ में अंजलि। साथ इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं डोंडी लोहरा बालोद से सुनील कुमार और आशा देवी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और साथ में श्रीमती फुंदीबाई बागरी। ये फरमाइश होता लिखते हैं आप है मॉडल टाउन करनाल से सुधी नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लेख भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद एहान, समरीन परवीन और साथ में ही माहिर अनूर। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं आप हैं काठुगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, सुनीता राज, भानुराज, अमित खन्ना अम्मी और साथ में हैं इनके परिवारजन। और ये फरमाइश होता उन्हें हमें लिख भेजी है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता दिव्य भारती और साथ में इनके परिवारजन। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और साथ में श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम है चीनी की राह।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारी श्रोता लिखते हैं, आप है बुलडाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर शशिकला सुमित कुमार, साथ में हैं साधना पवन पाटिल। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। करनाल से ही गुरविंद सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनविंदर सिंह पांधा और साथ में जी एस रामगढ़िया, रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र, साथ ही फरमाइश हमें लिखते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, साथ में सी टी छाबड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं दंतरेंगे की भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती और साथ में रुद्र वर्मा, दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी और साथ में लक्ष्य सोनी और साथ में है इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं श्री गणेश अविकाट श्री रामपुर से, डी अशोक कुम्भार, अभिका जीविका और साथ में सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है गंज डिंडवारा से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नायाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और साथ में इनके बहुत सारे मित्र, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरी नासना और साथ में मोहम्मद कैफ अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर चावला, बानी चावला, लोकेश पायल जोशी, बेबी वेदेही जोशी, अंशिका और कुमारी अंकिता जोशी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, संजय कॉलोनी खंडवासी अब्दुल गफार डावर, अब्दुल्ला कजियाउलक, मोहम्मद उमर डावर, साथ में राजेंद्र कटारी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है, सहारनपुर से हैं सोनाली नारंग, आशा और सुरेश नारंग। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, पूर्णा जंक्शन से अनंत भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इनमा खान, मसल

सेफी और साथ में इनके परिवारजन झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक भाटिया। साथ ही फरमाइश लिखते हैं आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल संगीत रानी पप्पू महक सुनीता रानी आरजू हंसमुख लाल और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गांव ककराली पंचकोला से वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य अंजलि नेहा गुरमीत कौर और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की स्वर फिल्म का नाम

0: इजर सावन बसंत बहार।
1: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी आप हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुल्ला सलमा और सदर हम साथ में इनकी मोहम्मद आलम हाशमी अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबिहा नसूरी हम। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्निजा पूर्ण विशाल प्रिया दिशानी और साथ में निमिता हुजा गांव खरकड़ा चौबीसी से गुलू गांगड़ा सागर सीताराम कांगड़ा अंकित और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है आप हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद और शाहिद गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर सभी हमें खायल और जैनब मुजावर। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं आप हैं नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक शबनम शहनाज और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ सनावर से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश लिखते हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना सनकसा नाजी आफिया इब्राहिम सद्दाम और साथ में इनके परिवारजन। और

0: इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज ये लिखते हैं, जलालाबाद मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी आया नो जी शानो साथ में इनके परिभाजन। साथ ही मैसेज जो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा था, आप हैं गांव जखण गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी, आप हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट रोजी पल और बिलिस डिकेस्ट। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं गांव जाखुद राजस्थान से शंभू दयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश और दीपक और साथ में कुमारी पूजा। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है, आप हैं पुरानी भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदीन जीशान शाहनवाज और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी थी, आप हैं हांसी से सुभाष योगी सुशील और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता, आप है सिंधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार राधा डाबी विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है, आप हैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से आकाश कुमार और इनके परिवारजन। श्रोतम इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, समय 12 बजने को अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया।

है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: All 81 MLAs of the Assembly are expected to cast their votes. In Mizoram, voting for the lone Rajya Sabha seat is also underway, with candidates from the ruling Zoram People's Movement and the opposition Mizo National Front locked in a direct contest. In Himachal Pradesh, 7 people lost their lives in a road accident in Chamba district last night. All the deceased were residents of the same village, including 3 real brothers and a married couple. The accident occurred near Mani Zero on the Pokhri Masroon Road in the Chora Assembly area when a Bolero vehicle went out of control and plunged nearly 500 metres into a deep gorge. US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point Memorandum of Understanding MOU aimed at ending hostilities between the two countries, reopening the Strait of Hormuz and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. The White House also said Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris yesterday. In the FIFA World Cup 2026, England opened their Group L campaign with a 4-2 victory over Croatia at Dallas Stadium in Arlington, United States. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ व संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुका है और करोड़ों लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। आयुष एवं आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दे छाए रहे। केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रीन एंड क्लीन यात्रा का संदेश दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ विकासखंड की ग्राम पंचायत पठाली में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल और जंगली जानवरों के आतंक से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त बढ़ाई। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार व्यक्त किए हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए रोबिन कर्माकर के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रोबिन कर्मा करके गाए भजन। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब मैंने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, लेकर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी अपनी रेडियो वाली फ्रेंड किरण जोशी। बहनों, सही खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा मस्तिष्क और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। बहनों, सही खान पान से हमारा तात्पर्य है मौसमी फल सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, पानी की सही मात्रा लेना, मतलब पूरे दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना, अपनी दैनिक आहार में हरी सब्जियों और दालों की भी पर्याप्त मात्रा लेना। बहनों, अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मैनू, आज हम भोजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम मना रहे हैं सतत खान पान दिवस, यानी कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की सतत खान पान दिवस की थीम है भोजन विरासत का जश्न मनाना। और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य बहनों, भोजन का पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय सामग्रियों और पाक कला के माध्यम से जैव विविधता और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना है। तो बहनों, स्वच्छ, ताजा और स्वस्थ भोजन खाएं और स्वस्थ रहें। बहनों, अब बात करते हैं समेकित बाल विकास योजना की, जो कि भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और पारंपरिक शिक्षा को एकीकृत कर लाभ प्रदान करना है। और ये योजना देश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की भी जा रही है, जिसके तहत 6 आवश्यक सेवाएं, जो कि पूरक पोषण, जिसमें बच्चों और माताओं को कुपोषण से बचाने हेतु पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, पूर्ण विद्यालयी शिक्षा, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में कहानियों, कविताओं द्वारा और प्रारंभिक मानसिक विकास सुनिश्चित करना है ऐसे ही प्रतिरक्षा हेतु बच्चों को नियमित टीकाकरण कराना, स्वास्थ्य की जांच करना, रेफरल सेवाएं देना, जिसके अंतर्गत कुपोषित या बीमार बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाना और साथ ही उसके पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर भी जागरूक करना है। इसके साथ ही बहनों, इस योजना का मुख्य लक्ष्य बाल मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है, और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी अन्य पहलुओं के साथ समन्वय स्थापित करना है। तो बहनों, ये रही कुछ सामान्य जानकारी। और अब, क्योंकि आज है गुरुवार और आज होता है आपका अपना फोन इन कार्यक्रम

0: रेडियो सखी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपका अपना रेडियो सखी कार्यक्रम और लेते हैं आज की पहली कॉल।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, हमसे कौन बात कर रहे हैं?
1: तितलियों के पंख लगाकर उड़ जाना है काम मेरा, ये तो यही समझो के राबिया है नाम मेरा। दीदी जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ।
0: राबिया। ओके राबिया, कैसे हैं आप?
1: जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम?
0: हम भी अच्छे हैं राबिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी जी, मैं मुझे फलवर से बात कर रही हूँ।
0: ओके, कैसे हो फिर आप?
1: जी हम बहुत अच्छी हैं, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: हमारे यहाँ तो बहुत सारी धूप निकली है, बहुत गर्म हो रहा है।
1: और दीदी जी, हमारे यहाँ भी धूप निकली हुई है, बहुत गर्म हो रहा है मौसम।
0: अच्छा, तो प्रे करिए कि बादल आ जाए अचानक से और बारिश हो जाए।
1: हाँ जी दीदी
0: और क्या कर रहे थे राबिया अभी आप?
1: जी, हम अभी भी कॉल लगा रही थी और अब
0: अच्छा, और
1: कॉल लग गया। दिन
0: जी बिल्कुल। और आपका खाना पीना हो गया दिन का?
1: का खाना पीना हो गया जी, नमाज भी पढ़ ली है, नमाज पढ़कर ही हम कॉल लगा रहे थे।
0: अच्छा राबिया, में कौन कौन है आपके?
1: घर में मेरी मम्मी पापा है, मैं हूँ, मेरे भाई है।
0: जी राबिया, आप ये बताओ आजकल कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो कहते हैं ना हमारी झांसी की रानी थी जिनको कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने महिलाएं और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है या कुछ परेशानी हुई है जिसको आपने खुद सॉल्व किया हो और आपको लगा हो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए?
1: दीदी जी, हमारी लाइफ में तो कोई ऐसे नहीं हुआ है, अगर होता भी है तो हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं।
0: जी अच्छी बात है। तो ऐसी कोई घटना जिसमें आपको हाँ लगा हो कि मुझे ये करना था और ये ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता?
1: हाँ जी हुआ है, अगर और ज्यादा पढ़ लेती है तो मुझे बहुत अच्छा होता, हिंदी इंग्लिश पढ़ती तो मैं और भी ज्यादा होता, ये कारण है ये तो।
0: तो आपको अभी लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए?
1: हाँ जी लगता तो है।
0: करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप करिए अभी भी अगर आपको लगता है ऐसा। तो
1: हाँ जी ये तो बात सही है।
0: आज हमसे आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी राबिया?
1: दीदी जी, फिल्म का नाम प्यार किसी से होता है,
0: जी है
1: और
0: ना।
1: गीत के बोल रहे हैं चल प्यार करेगी आज ही आज।

0: हेलो रेडियो सखी।
1: हेलो,
0: हेलो रेडियो सखी में
1: नमस्कार
0: आपका
1: मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है। हमसे कौन बात कर रहा है?
1: मैम, मैं शहनाज बोल रही। जी
0: शहनाज बात कर रहे हैं।
1: मैम।
0: तो शहनाज क्या कर रहे थे अभी?
1: मैम देखो, आप इंतजार कर रहे थे। जी
0: खाना पीना हो गया दिन का?
1: मैम।
0: ओके। और कैसा वेदर हो रहा है आपके यहाँ?
1: मैम देखो, बारिश हो रही थी एक हफ्ता पहले, अब तो गर्मी हो रही। जी
0: हाँ बहुत धूप हो रही ना, यहाँ भी हो रही है।
1: मैम, बादल भी नहीं छा रहे।
0: हाँ चलिए कोई नहीं, प्रे करते हैं मे भी अच्छा हो जाए वेदर।
1: जी मैम।
0: अच्छा शहनाज झांसी की रानी थी हमारी, बहुत उन्होंने मेहनत करी थी अपने राज्य के लिए। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी कि हाँ नहीं हमें स्वतंत्र रहना है ना, हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप हमें बताना चाहो, जिसमें आपने अपने साहस का परिचय दिया हो, आपको लगा हो हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं अपने काम के लिए खुद झांसी की रानी हूँ, और फिर आपने वो किया भी, तो कोई ऐसी घटना है तो हमसे शेयर कीजिए।
1: जी मैम, वैसे तो हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई नहीं आज तक, तो होने भी नहीं चाहिए किसी के साथ।
0: हाँ बिल्कुल।
1: है जी। और वैसे भी हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जैसे क्योंकि मैम जिंदगी ना चुनौतियों से भरी हुई है, तो हमें इस संघर्ष चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा, इन सब से निपटना पड़ेगा जो हमारे सामने जो भी आएगा।
0: तो शहनाज आज रेडियो सखी के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का शौक है।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपके हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हेलो रेडियो सखी।
5: हेलो
4: हेलो, हमसे कौन बात कर रहा है?
5: मैं, मेरा नाम सना है।
4: सना है, ओके। सना, रेडियो सखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: कैसे हो आप?
4: हम अच्छे हैं। सना, हमसे कहाँ से बात कर रही हैं?
5: जी, गांव पालीगंज, जिला सहारनपुर।
4: सहारनपुर से, ओके। तो सना क्या करती हैं?
5: जी, घर के काम करते हैं मम्मी के साथ।
4: ओके, बहुत अच्छी बात है, आप मम्मा की हेल्प करते हैं। और सना, इसके अलावा आपके क्या क्या शौक हैं?
5: जी, मेरे शौक है सिलाई करना।
4: ओके, तो क्या क्या सिल लिया आपने?
5: मुझे सिखानी है, बस सिलाई सीख रही हूँ।
4: अच्छा, सीख रहे हैं, ओके। जब सीख लेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें सिलेंगे।
5: जी।
4: अच्छा, सबसे पहली चीज क्या सिलेंगे, आपने कुछ सोचा है? जब आपको अच्छे से सिलाई आ जाएगी।
5: जी, तब रहूंगी।
4: ओके, और क्या क्या चीजें आपको पसंद करना?
5: जी, खाना बनाना।
4: अरे वाह, तो कोई स्पेशल रेसिपी जो आप बनाते हो और सबको बहुत पसंद आती है?
5: दाल चावल।
4: दाल चावल, कौन सी दाल?
5: मकड़ी की।
4: ओके, बनाइए और सबको खिलाइए जिससे सब खुश होए। सना, अच्छा, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना, महिलाओं के साथ या कोई भी लेडी है या कोई गर्ल है, कभी अचानक से कभी किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है ना, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखना चाहिए? जैसे हमारी झांसी की रानी थी ना, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने लिए खुद लड़ाई लड़ी है ना। एक हम एग्जाम्पल देते ना कि हमें स्वयं के लिए झांसी की रानी बनना है, तो अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती है या हुई है तो आपने किस तरह उसे टैकल किया?
5: जी, वो क्या, मेरे एक सेंसिटिव को कुछ हो रहा है, तो मैं अपनी मम्मी को पहले बताती हूँ।
4: अगर मम्मी नहीं है वहाँ पे तो आप क्या करोगे? वही तो बोल रहे हो, आप खुद अपने आप के लिए कैसे लड़ाई लड़ोगे, आप क्या ऐसा करोगे?
5: जी, मैं लड़ाई लड़ू, क्योंकि जब मैं बहन भैया की उन्हें कोई कुछ कहता तो मैं उन्हें भी कुछ बोलने देती।
4: और जैसे आजकल कहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए हमें अपने साथ पेपर स्प्रे रखना चाहिए, है ना।
5: मैम जी, पहली बात यार की जो इसमें देश में है ना, कोई महिलाओं को समझता ही नहीं, उन्हें अपने आप को अपने से लड़ना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हम भी कुछ हैं।
4: बिल्कुल, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, हमें शिक्षित होना चाहिए, जितना हो सके हम पढ़ लिख के आगे बढ़े।
5: जी मैम, पढ़ाई बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल। तो सना, आज रेडियो सखी के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
5: हिंदुस्तानी मूवी का परदेसी, परदेसी गाना।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो सखी,
0: जी, मेरा
1: हमसे कौन बात कर रहा है?
0: नाम माधुरी सिंह है।
1: माधुरी जी, आपका रेडियो सखी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ
1: ओके, क्या करते हो रहे माधुरी जी आप?
0: जी। मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: ओके, हाउस वाइफ, होम मेकर है, जो कि बहुत बड़ा काम है अपने घर को संभालना। आई थिंक सबसे ज्यादा
0: जी
1: वर्क हाउस वाइफ ही करती हैं।
0: जी
1: और कौन कौन है आपके घर में?
0: घर में जी पूरा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है।
1: ओके, आजकल आपके यहाँ वेदर कैसा हो रहा है?
0: वेदर ठीक है, बहुत
1: ओके,
0: ज्यादा गर्मी नहीं है लेकिन ठीक है
1: और आजकल तो समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे सब
0: जी
1: घर में धमा चौकड़ी मचा के रखे होंगे।
0: जी जी
1: अच्छा माधुरी जी, जैसे हमारी झांसी की रानी थी, वो आत्मनिर्भर थी, उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने अपना बलिदान तक दिया। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो हम महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन्हें आत्मनिर्भर किस तरह बनना चाहिए, और अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक दूसरों को संदेश दे सके? अच्छा
0: जी मेरे ख्याल से तो मतलब बेटियों को और महिलाओं को पढ़ लिख कर थोड़ा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मतलब जहाँ उन्हें जरूरत है वहाँ उन्हें बोलना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: मतलब अपने हक के लिए बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब वो बोलेंगी, जब वो आगे बढ़ेंगी, तभी उन पर सभी लोगों का ध्यान भी जाएगा और उनको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम भी मैटर करते हैं।
0: जी।
1: और आज के समय में तो सभी बेटियां, महिलाएं सब आत्मनिर्भर हो रही हैं, और
0: आत्मनिर्भर हो रही है
1: बिल्कुल,
0: जी
1: और निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
0: जी जी
1: जी, तो माधुरी जी, आज रेडियो सखी के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: मेरा मनपसंद गाना है सिटी लाइट्स मूवी का,
1: जी
0: मुस्कुराने की वजह तुम हो।

तो बहनों, ये था हमारा आज का रेडियो सखी कार्यक्रम। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्र लिखकर और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जरूर बताइए। और बहनों, आप भी अगर हमसे फोन के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ना चाहती हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकती हैं। हमारा रेडियो सखी का नंबर है 7088001382। आप इस नंबर पे हमसे कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकती हैं और अपने फरमाइशी गीत सुन सकती हैं। आशा करते हैं अगले हफ्ते फिर आप सभी हमसे जरूर जुड़ेंगे। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। और अब बहनों, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो अब अपनी दोस्त किरण जोशी को दीजिए।

0: अभी मैंने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और CEO बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के CEO से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार और जिम्मेदार AI गवर्नेंस पर मिस्ताल AI के सह संस्थापक और CEO आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और CEO रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने TMC विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त

0: तो 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राशन कार्ड बनवाने के आय मानकों की समीक्षा की जाएगी। राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश 1 सप्ताह में जारी होगा। चारधाम यात्रा और मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन सतर्क और पौड़ी में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ व संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन, सकारात्मक जीवन शैली तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में योग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने और योग को जन जन तक पहुंचाने में योगदान देने का आग्रह किया। प्रदेश में एपीएल राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित विभागीय बैठक में उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव लेकर संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवम्बर माह से लंबित लाभांश 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम राशन कार्ड से समय पर नहीं हटाने और उसके नाम पर राशन लेने के मामलों में रिकवरी तथा कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।
3: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ, तो वो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन पात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सत समय में सूचना नहीं देंगे और विगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी, तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित के खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में आया कि 39 करोड़ की धनराशि जो है वो विभाग को आजकल में ही प्राप्त होगी और उसे 1 हफ्ते के अंदर समान रूप से 13 जनपदों में दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सहूलियत हो जाएगी।
2: देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष

0: अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दे छाए रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा करने और विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत और विभागीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा और मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर तैनात रहने तथा बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो तो जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने भी अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सके। विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इन निर्देशों की जानकारी देकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। केदारनाथ धाम क्षेत्र और यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। यात्रा मार्ग पर 240 से अधिक शौचालय संचालित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत धाम और यात्रा मार्ग की नियमित सफाई के लिए 410 पर्यावरण मित्रों और 32 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। वहीं ठोस अवशिष्ट के संग्रहण के लिए 600 से अधिक डस्टबिन स्थापित किए गए हैं। नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा दो संस्थाओं के सहयोग से लागू की गई कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत श्रद्धालुओं को सूखा कूड़ा वापस लाने के लिए विशेष बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग में स्थापित कम्पैक्टर मशीन से प्रतिदिन औसतन 3 टन से अधिक ठोस अवशिष्ट का वैज्ञानिक से निस्तारण किया जा रहा है। इस बीच कल केदारनाथ धाम में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर परिसर, केदारपुरी और नदी तट के आसपास व्यापक सफाई की गई। इस दौरान पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता कर्मियों और विभिन्न सहयोगी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन व क्लीन यात्रा का संदेश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार केदारनाथ धाम की पवित्रता, स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
0: कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करने और किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से पौड़ी विकास भवन सभागार में खेत बचाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकृति जुयाल ने कहा कि रासायनिक खाद और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का आह्वान करते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास और युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत उत्तरकाशी के सीमांत गांव सुखी, झाला और बगोरी में योग, मनोरंजन खेल प्रतियोगिता, ग्राम दर्शन व आपदा प्रबंधन पर विशेष सत्रों का आयोजन कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राशन कार्ड बनवाने के आय मानकों की समीक्षा की जाएगी। राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश एक सप्ताह में जारी होगा। चार धाम यात्रा और मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन सतर्क और पौड़ी में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था दस्तक। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत मदन मोहन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम पिया का घर।

जोनी मेरा नाम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार थी कल्याण जी आनंद जी। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खीरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत

0: सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं।

इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है।

0: आंखें रखना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
1: मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
2: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
2: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरे माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
2: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
2: हा?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
2: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।

0: माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास

0: पट भाग कर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
4: बड़ी
0: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो

0: 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक

0: जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, हमारे देश में ऐसे अनेक जाबाज हैं जो देश की सेवा करते करते बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं और फिर देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही थे उड़न सिंह मिल्खा सिंह, जिन्होंने सेना में रहकर एक अच्छे धावक बनकर देश का नाम रोशन किया।

सैनिक साथियों, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर यानी कि तब के पाकिस्तान में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। भारत पाक विभाजन के समय ये भारत आ गए। सैनिक साथियों, मिल्खा सिंह का बचपन बहुत ही मुसीबतों में बीता और यही कारण रहा कि उन्होंने जीवन में कुछ अलग नया करने का सोचा।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, मिल्खा सिंह ने देश की सेवा करने के लिए प्रयास किया और 1952 में सेना में भर्ती हो गई। विद्युत मैकेनिकल इंजीनियर शाखा में शामिल हो गए। सैनिक साथियों, एक बार ऐसा हुआ कि सशस्त्र बल के कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने इन्हें रेस के लिए प्रेरित किया और उसके बाद ये कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास करने लगी। लेकिन इन्हें सफलता मिली सन 1956 के राष्ट्रीय खेलों में, जब इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ को सफलतापूर्वक किया और इस प्रकार से सफलतम धावक बने। और कुछ समय के बाद भी 400 मीटर के लिए इन्होंने विश्व का नया कीर्तिमान स्थापित किया।

सैनिक साथी मिल्खा सिंह ने धीरे धीरे वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जब सेना में शानदार सेवाएं दी और धावक बनकर विश्व में तिरंगा फहरा दिया। इस प्रकार सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निदेशक पंजाब के पद पर नियुक्त हुए और खेलों से संन्यास ले लिया, लेकिन भारत सरकार के साथ मिलकर ये लगातार खेलकूद के लिए लगातार प्रोत्साहन देने लगी। मिल्खा सिंह ने अपने खेलकूद में अनेक रिकॉर्ड बनाए, जिनमें 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1968 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1958 में एशियाई खेलों की 400 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने 400 मीटर और 400x4 रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं वर्ष 1964 के कलकत्ता में राष्ट्रीय खेलों के 400 मीटर रेस में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: सैनिक साथी, वर्ष 2013 में मिल्खा सिंह के जीवन पर फिल्म का निर्माण किया गया। फिल्म का नाम था भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा और ये फिल्म बेहद ही लोकप्रिय हुई थी। परशोत्तम 18 जून 1921 को मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सैनिक साथियों, उड़न से एक मिल्खा सिंह की देश के प्रति शानदार सेवाएं और उनकी उपलब्धियों को आज हम पुण्यतिथि के अवसर पर सलाम करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्म से कार्यक्रम का यह अंतिम गीत।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: सैनिक साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होंगे आपके साथ एक नए जाबाज और उसकी कहानी से जुड़ी लेकर कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों

अब आप मधुता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान

समापन किया। प्रदेश में एपीएल राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्य

गतिविधियों के लिए एक विस्तृत और व्यापक नीति लागू करेगी। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा, नीति में सुरक्षा मानक, चिकित्सकीय जांच, आपातकालीन प्रबंधन, उपकरणों की गुणवत्ता, प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता और नियमित ऑडिट जैसे पहलुओं को शामिल किया।

श्रेया घोषाल की आवाज थी, फिल्म का नाम था जिस्म। गीत को लिखा था नीलेश मिश्रा ने और संगीत एमएम करीम का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत रचना समीर की, संगीत अनु मलिक का, आवाज है अभिजीत की और फिल्म का नाम है जोश।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

आप सुन रहे थे बीवी नंबर 1 से गीत, आवाजें थी सुखविंदर सिंगल का याग्निक और साथियों की, गीतकार थे समीर और संगीतकार थी अनु मलिक। श्रोताओं कहानी नई तरह ने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह कार्यक्रम का अगला गीत आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए। बोल है राजेश मलिक की और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था बोल बच्चन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम चांदनी चौक टू चाइना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ये संगीत अनु मलिक का गीत है, समीर का। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपकी चुपकी।

गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आवाजें हैं सोनू निगम और तुलसी कुमार की फिल्म का नाम दबंग टू। गीतकार हैं इरफान कमाल और संगीतकार साजिद वाजी।

समीर के लिखे शब्दों को संगीत दिया था नदीम शर्वण ने। यह आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था दामिनी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत रचना नुसरत पद्र की और संगीत इस्माइल दरबार का। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साथियों की। फिल्म का नाम है देवदास।

फिल्म देवदास के इस गीत के साथ ही गानी नहीं तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजने को है, थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव जाटू लोहारी भिवानी में जी। वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और जब फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ उनको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है, जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलाकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, क्योंकि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: हाँ, देखो जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एनडीए आप चाहते हो फौज ज्वाइन कर।
0: बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारती था, मेरे मेरे 12th एक ही बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
0: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला असला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाडन सीनियर्स होते हैं, वो हमें आते हैं।
0: बातें तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
0: वाह, क्या
1: और
0: बात
1: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक

0: रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर दिखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जुजिला कंपनी, मेरा जुजिला कंपनी के जो मित्र हैं और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
1: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
0: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
1: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा,
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था। एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
0: ले जा ले, ग्रिल लगा।
1: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जी तो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूँगी।
1: तो जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुका छुपी बहुत हुई,
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है, और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर here who has such kind of ये कहूंगी मैं सोच है, जिसके पास जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात

0: करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे, वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो अनिल तन्वर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया, खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही माहौल बन चुका था। एक बात बताइए अनिल तन्वर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने उस टाइम पर मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था, सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफर है, सफर नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है, हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर, और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं, आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी, हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं, उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन्स होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती, खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी, फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने तो कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना तो बहुत मशहूर होता था, यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई, तो उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है, तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पे रोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको

0: लिए निछावर करती है। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने, तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता, हालांकि देश के लिए, देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोसमेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिससे हम जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोस ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोस 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहे।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है, उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर रहता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको उसको, कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड थिंग। तो मेरे को लगता है आपको वो इंग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इंग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रहता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आप मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये

0: मेरे मुंह से ही निकाल ली कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी, निश्चित रूप से आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह, क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही, जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं,

0: परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नय्यर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा पब्लिक। लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है। पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम जी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की। आपके मिशन के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए की दृष्टि की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी थी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं क्या किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिली। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट।
1: एंड पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, कि मैं तो अवसर था वो, शी वॉज यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअली। एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई। और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई किसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट ही इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना. और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
0: वाह
1: आ
0: क्या
1: जाता
0: बात है.
1: है,
0: यानी कि वो पल जिस
1: वो
0: वक्त
1: पल
0: आप प्रणय
1: जिसमें
0: सूत्र
1: उन्होंने
0: में
1: डांस
0: बंधे
1: किया है
0: और उनका नृत्य कहीं ना
1: उनका
0: कहीं
1: बहुत
0: आपको
1: असर.
0: लुभा गया. वाह क्या बात है. कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है. तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया है, तो क्यों ना मैम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें.

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलमर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं, तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्स जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था, मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया।

0: किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: आज की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।
1: जी
0: आपको एक ऐसे राह मिल जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें। उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर शाम के 5 बज रहे हैं। अब सुनिए समाचार।

0: कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहली जानकारी दे रहे हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:00 किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आज सुनिएगा चार धाम यात्रा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व विषय पर डॉक्टर सुशांत राज से बातचीत। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी अब से थोड़ी ही देर में यानी 5:10 पर। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। आरएनयू का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण आप सुनेंगे शाम 7:40 पर और रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज रात 8:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल। रात 10 प्रसारित होगा कार्यक्रम खेल पत्रिका और फिल्म संगीत आप सुनेंगे।

शाम 7:40 पर, रात 9:30 पर और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल यानी शुक्रवार का दिन है, 19 जून है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम चिंतन और वंदना के साथ होगी। कल सुबह 6:25 पर आप सुनेंगे गांधी कथा। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:35 पर सुनिएगा अंशु वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत। महिला जगत के कार्यक्रम में कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे श्रीमती कांता गिल्डियाल से कविता पाठ और दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए, जिसमें कल बात होगी कैप्टन विक्रम सिंह सेजवाल की। कल शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा माफ कीजिएगा

शाम 5:45 पर कल ग्राम जगत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री मदन मोहन डुकवाल से कविता पाठ और कौमुक लोक परंपरा और लोक जीवन विषय पर श्री आरपी पंत से कुमाऊनी वार्ता। और कल 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: उड़ान भरने के लिए आसमान की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, और हौसले वही रखते हैं जो सपनों को सच करने का साहस रखते हैं।
1: युवा शक्ति ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब सपनों के साथ सही दिशा और ज्ञान संकल्प जुड़ जाए तो सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके दोस्त और होस्ट, मैं आयुषी भट्ट,
0: और मैं हूँ दोस्तों आपके दोस्त और शो की होस्ट अंशिका। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे साथ आज का कार्यक्रम सुन रहे होंगे, जहाँ हम लेकर आए हैं चर्चा, गीत, संगीत और सेगमेंट। तो बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक।
1: दोस्तों, जब भी देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो एक नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने आयुषी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये DRDO वास्तव में करता क्या है? क्या इसकी भूमिका केवल सेना के लिए हथियार बनाने तक सीमित है, या फिर ये देश के विकास में भी योगदान देता है?
1: ये तो बहुत अच्छा सवाल है अंशिका, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, देश के विकास में।

0: डीआरडीओ की भूमिका। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये जानकर कि डीआरडीओ है क्या।
1: दोस्तों, डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी तकनीक और उपकरण विकसित करना है।
0: यानी दोस्तों सरल शब्दों में कहें तो डीआरडीओ देश को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक विकास का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है।
0: अंशिका, वैसे जब हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले रक्षा क्षेत्र का ही उल्लेख होता है, क्यों, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और दोस्तों, डीआरडीओ ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की हैं, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और आकाश मिसाइल।
0: और इन प्रणालियों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाया है और देश की रणनीतिक शक्ति को भी नई पहचान दी है। और
1: बिल्कुल
0: यही नहीं, आधुनिक रडार, निगरानी प्रणालियां, ड्रोन तकनीक और युद्ध उपकरणों के विकास में भी डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों।
1: बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ का योगदान केवल सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। कई बार डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकों का उपयोग आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में भी किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा अंशिका तुमने। और इसके उदाहरण ये है दोस्तों कि जैसे आपदा प्रबंधन के दौरान उपयोगी तकनीकें, विशेष सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायक कुछ तकनीकी समाधान भी डीआरडीओ के अनुसंधानों से जुड़ रहे हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान भी डीआरडीओ ने चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य संबंधी तकनीकों में विकास के लिए सहयोग दिया था।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, ये दर्शाता है कि विज्ञान और तकनीक केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते बल्कि समाज के व्यापक हित में भी काम आते हैं। और साथ ही आयुषी, मुझे लगता है कि डीआरडीओ युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।
0: बिल्कुल, देश के अनेक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और मेहनत से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया है।
1: बिल्कुल
0: और जब युवा विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वे केवल अपना करियर नहीं बनाते बल्कि देश के विकास में भी भागीदार बनते हैं।
1: बिल्कुल। यानी डीआरडीओ की उपलब्धियां केवल रक्षा क्षेत्र तक सफलता नहीं है बल्कि देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की भी कहानी है।
0: तो दोस्तों आज हमने जाना कि डीआरडीओ देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: और ये भी आयुषी कि विज्ञान और नवाचार की शक्ति किसी भी राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं ये गाना मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा भसीन की आवाज में।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है युववाणी और आप बने हुए हैं हमारे यानी अंशिका
4: और आयुष के साथ।
3: दोस्तों, आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है ITI रोजगार का मजबूत आधार। रमेश चंद्रा की श्री मितेंद्र कुमार से बातचीत, अनुदेशक ITI निरंजनपुर मंडी देहरादून। आइए सुनते हैं।
5: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है श्री मितेंद्र कुमार चौहान को। आप इंस्ट्रक्टर हैं ITI देहरादून में। मितेंद्र कुमार चौहान जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
6: धन्यवाद रमेश जी।
5: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है रोजगार का सशक्त आधार, ITI। तो सबसे पहले चौहान साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो ITI हैं वो रोजगार का सशक्त आधार कैसे हैं?
6: जी, मेरे विचार से रोजगार का सशक्त आधार कौशल, शिक्षा और आत्मनिर्भरता है। आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और नई तकनीकों को समझना भी आवश्यक है। सरकार की कौशल विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर और डिजिटल माध्यम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। यदि युवा अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण लेकर मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वो न केवल अपना बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
5: जी, अगर आज के समय की बात करें तो रोजगार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
6: रमेश जी, आज के समय में कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा और उद्यमिता को प्रोत्साहन रोजगार बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके हो सकते हैं।
5: जी मितेंद्र कुमार जी, अगर ITI की बात करें तो ITI किस तरह से बेरोजगारी कम करने में सहायक हो सकते हैं?
6: इसमें मैं कह सकता हूं कि रोजगार प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से ही बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
5: ITI में किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं जिनके द्वारा जो हमारा युवा है या जिन लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं वो रोजगार से जुड़ सकते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हों?
6: ITI में बहुत सारे कोर्स चलते हैं जिसमें हम कुछ कोर्स को इस प्रकार से जानते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और बहुत सारी का हम ITI के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं।
5: जी मितेंद्र कुमार जी, आपने बहुत सारे ट्रेड बताए जैसे टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, इस तरह। तो ये किस तरह से व्यक्ति में है जो स्किल है उसका विकास करते हैं?
6: जैसे कि हम जानते हैं कि एक डिग्री लेकर सफलता की ऊंचाई को नहीं छुआ जा सकता।
5: जी,
6: उसके साथ में हमें बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी कार्य में स्किल होना।
5: जी,
6: अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें छोटे प्रशिक्षण लेने आवश्यक हैं। जिन प्रशिक्षण को हम ITI के अंदर चलाते हैं, फिटर के रूप में, वेल्डर के रूप में, इलेक्ट्रिशियन के रूप में, हम छोटे छोटे कामगार बनाते हैं जिससे युवा सरकारी जॉब से लेकर अपने स्वरोजगार तक करने में सक्षम हो जाता है।
5: जी, आपने ये जो कुछ कोर्स बताए थे, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, सर्वेयर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, ये कोर्स क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है?
6: जी, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या 8 है।
5: प्रवेश की भी कोई प्रक्रिया है या कोई भी व्यक्ति आके कभी भी प्रवेश ले सकता है?
6: प्रवेश की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। प्रतिवर्ष जून माह में हम प्रवेश प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता है
5: जी,
6: उसके बाद काउंसलिंग होती है, बच्चे मन के मुताबिक ट्रेड चुनता है और उसमें फिर हम दाखिला देते हैं।
5: आपके अनुसार कौन से ऐसे ट्रेड है जिनकी मांग अभी सबसे ज्यादा है और आने वाला जो समय है उसमें बढ़ने की संभावना?
6: आज के समय में हम ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रेड अच्छी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है हर दिशा में काम चल रहा है, कोई भी ट्रेड छोटी या बड़ी नहीं है, प्रत्येक ट्रेड अपने अपने जगह पर अपना अपना एक महत्व रखती है
5: जी। आईटीआई को भविष्य की चाबी कहा जाता है, क्या वजह है इसके पीछे?
6: इसमें मैं कहना चाहूंगा, मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखते रहना ही रोज सफलता की कुंजी है
5: जी। मितेंद्र कुमार जी, आपके अनुभव में कोई ऐसा उदाहरण आपने देखा हो जहां किसी विद्यार्थी ने आईटीआई ज्वाइन किया और उसके बाद उसके जीवन की जो दिशा है वो बदल गई हो?
6: जी, बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे हमने वर्तमान में एक विदेश रोजगार प्रकोष्ठ चला रखा है
5: जी,
6: उसके अंतर्गत हम बच्चों को प्रॉपर चैनल के थ्रू विदेश में रोजगार के लिए भेजते हैं
5: जी,
6: जिसमें कुछ खर्चा हमारी सरकार करती है और जहां बच्चा प्लेस होता है कंपनी, कुछ खर्चा उस कंपनी के द्वारा भी बच्चे को वहां तक लाने में किया जाता है
5: जी। ट्रेनिंग के दौरान क्या जो आईटीआई का कॉलेज है उसके द्वारा भी कुछ स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति जो हमारे छात्र हैं जो प्रशिक्षणार्थी हैं इनको दी जाती है?
6: जी, जो छात्रवृत्ति है, जो भारत सरकार का जो रूल है छात्रवृत्ति का SC ST, वो हम फॉलो करते हैं और उसी आरक्षण को हम एडमिशन के समय भी देते हैं, उसी के अनुसार बच्चे का एडमिशन हम लेते हैं
5: जी। क्या इसमें कोई एग्जाम होता है एडमिशन के लिए या कोई भी छात्र आके एडमिशन ले सकता है?
6: नहीं, टॉप मेरिट यानी उसके जो मार्क्स होते हैं हाई स्कूल की मार्क्सशीट में जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हम उसके टॉप मेरिट तैयार करते हैं और उसी के अनुसार हम उसको ट्रेड देते हैं
5: जी। क्या बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है आईटीआई में?
6: बिल्कुल सर, बेटियों के लिए भी बहुत प्रावधान है। बेटियों को हर ट्रेड में आईटीआई करने के लिए विशेष 36 आरक्षण दिया जाता है, बेटियों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनके सेफ्टी से लेकर और उनकी रोजगार तक की हम पूरी गारंटी लेते हैं
5: जी। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हो आईटीआई की जिनके बारे में हमारे जो युवा हैं, महिलाएं हैं या जो छात्राएं हैं उनको कम जानकारी हो?
6: हमारी आईटीआई में वर्तमान में कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
5: जी,
6: इसके तहत हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसकी कोई फीस नहीं लगती है और उसको प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद 15,000 की टूल किट प्रोत्साहित दी जाती है, 3,00,000 रुपए तक का लोन भी हम उसे आसानी से देते हैं, प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, ये सारी सुविधाएं हम उसको देते हैं। दूसरी योजना नल जल मित्र योजना है, जैसे पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के रख रखाव के लिए प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण, ग्रामीण पंचायतों में रोजगार के अवसर, जल जीवन मिशन के तहत जुड़ाव, ये इस योजना के तहत है। तीसरी योजना हमारे यहाँ जो चलती है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली जो सोलर पैनल स्थापना और रख रखाव की ट्रेनिंग देती है
5: जी।
6: और अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं जैसे NAPS उद्योग में स्टाइफंड के साथ ट्रेनिंग, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है हम दो मॉड्यूल में ट्रेनिंग देते हैं, एक हमने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया है DST
5: जी,
6: उसमें क्या सिस्टम है, उसमें बच्चे की जैसे 2 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल प्रशिक्षण वो हमारे इंस्टीट्यूट में लेगा और 1 साल हम उसको किसी उद्योग में भेज देंगे
5: जी।
6: वहां पर उद्योग में जाने से उसको स्टाइफंड के रूप में 9,000 से लेकर 13,000 रुपए तक का स्टाइफंड उसको दिया जाता है पर मंथ
5: जी। ये स्टाइफंड कितने समय तक दिया जाएगा?
6: जब तक उसकी ट्रेनिंग चलेगी 1 साल तक
5: जी,
6: तब तक उसको स्टाइफंड दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी ट्रेनिंग जब सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगा उसके बाद हम उसको अप्रेंटिस में भी भेजते हैं, फिर अप्रेंटिस भी 1 साल की होती है, वहां पर भी उसको भारत सरकार के अनुसार स्टाइफंड दिया जाता है
5: जी। जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें कुछ आफ्टर सपोर्ट कह सकते हैं जैसे उसकी जरूरत पड़ती है कि लोन के लिए हो गया या अन्य कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान नहीं हो पाती, कुछ इस तरह की भी सहायता दी जाती है क्या?
6: जी बिल्कुल, ये जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है इसके बिहाव पे बैंक से लोन ले सकता है
5: जी,
6: उसमें बैंक की तरफ से कुछ छूट दी जाती है उसको और कुछ उसको अदा करना पड़ता है
5: जी।
6: जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसमें हम जब वो ट्रेनिंग पूर्ण कर लेता है तो हम उसको 15,000 की टूल किट तो पहले ही दे देते हैं
5: जी,
6: जो उसके काम में यूज होने वाली है। उसके बाद भी अगर वो अपना स्वरोजगार करना चाहता है और उसमें खर्च के लिए पैसा नहीं है तो हम उसे 3,00,000 रुपए तक का ऋण भी मुहैया करा देते हैं। उसके लिए एक छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं जो से वो पूर्ण करता है और उसको लोन स्वीकृत हो जाता है।
5: जो युवा आईटीआई के द्वारा रोजगार से जुड़ना चाहते हैं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
6: युवाओं के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि वे अपने लक्ष्य पर फोकस करें और नई चीजें सीखें, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास के साथ मेहनत करें, यही चीज उसको सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा मैं, जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं
5: जी,
6: अपना रजिस्ट्रेशन www.ukgitivpp.in पर रजिस्टर करें या अपनी नजदीकी आईटीआई में संपर्क करें।
5: मितेंद्र कुमार चौहान जी कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को रोजगार का सशक्त आधार आईटीआई पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
0: आईटीआई रोजगार का मजबूत आधार विषय पर अभी आपने सुनी श्री मितेंद्र कुमार, अनुदेशक आईटीआई निरंजनपुर मंडी देहरादून से रमेश चंद्रा की ये बातचीत। तो आइए दोस्तों अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म बर्फी से निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ में ये गाना।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों आज है गुरुवार और हर गुरुवार हमारे कार्यक्रम में शामिल होता है एक खास सेगमेंट जिसका नाम है रोजगार समाचार। तो आइए सुनते हैं रोजगार समाचार।
4: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि एवं पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 12वीं डिप्लोमा अथवा स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाएं।
3: केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने लगभग 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए एसएससी सीजीएल 2026 की आवेदन प्रक्रिया जारी की है। दोस्तों इसके लिए आयु सीमा पद अनुसार 18 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप ssc.gov.in पर जा सकते हैं।
4: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का स्नातक होना आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए centralbankofindia.co.in पर जाएं।
3: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 300 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए आपके पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री तथा नेट सेट या पीएचडी जैसी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं।
4: भारतीय रिजर्व बैंक ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन शुरू किए हैं। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए rbi.org.in पर जाएं।
3: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है जिसमें आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच में रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए आप tnpsc.gov.in पर जा सकते हैं।
4: नीति आयोग के फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत सीनियर लीड, सीनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर एसोसिएट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटेक, एमबीए अथवा समकक्ष योग्यता तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा पदानुसार 26 से 52 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए niti.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जूनियर असिस्टेंट तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी का स्नातक होना तथा कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर पद के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना भी कंपलसरी है। आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ रोजगार समाचार का ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म रांझना से, जिसे आवाज दी है जावेद अली ने।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम युववाणी यहीं पर संपन्न होता है। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम युववाणी कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं चिट्ठी भेजकर। और हमें चिट्ठी भेजने का पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल। हमारा पिन कोड है 248001।
1: साथ ही दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youddn@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे यानी आयुष भट्ट
0: और मुझे अंशिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

श्रोताओं, स्वागत छे आप सभी को अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत में। मैं छू आप दगर रुचि रावत। मैं तरफा बड़े आप सभी ते प्रणाम पहला सेवा सौली। श्रोताओं, उम्मीद करूँ छो कि आप लोग स्वस्थ वाला और ये भगत हम दगर जुड़िया वाला। श्रोताओं, जुड़ लवि के लेना कि आज आप सभी जन रहे हैं कि आज भी प्यार छो और आज खास कार्यक्रम यानी हफ्ता भर जो भी चिट्ठी पत्री आप हम तय भेज दें आज हम कार्यक्रम में शामिल कर ला। और यो चिट्ठी पत्री को जो कार्यक्रम छो घड़े कमी में आप तय सुना लो वहाँ दगर सुना लो आप तय कुछ गीत रंत रहवार। लेकिन श्रोताओं, पहले कर दें कुछ खास बात। श्रोताओं, इन धरती माँ मनखियों का दगड़ी अनेक पशु पक्षी और जीव जंतु भी रंदन। इंसानों और जानवरों को संबंध बीजापुर अनुजा पशु पक्षी केवल प्रकृति को हिस्सा नहीं बल्कि मानव जीवन का दगड़े छन। कई जानवर हमारी आजीविका सुरक्षा और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभादिन। वकी पालतू पशु हम थे प्रेम अपनास और भावनात्मक सहारा भी दिन। वकी पक्षी भी बीजों का प्रसार माँ मदद कर दिन। श्रोताओं, आजकल लगातार हम काफल खाना चाहना तो हम बोलते छिन बल्कि काफल और डाल अगर हम उगौला तो वे नहीं सकते। लेकिन यू काम पक्षी कर देना जब वो बीज था एक जगह बटकी दूसरी जगह लेके जन दिन तब वो पौधा उगद। लेकिन आज कई जानवर मानव गतिविधियों का कारण संकट मचन। लगातार होने वाली जंगलों की कटाई प्रदूषण वनाग्नि प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना का कारण अनेक बेजुबान जीव कठिन परिस्थितियों को सामना करना छन। कोई भोजन पानी खुणे भटकना छन कि अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ना। इनामा हमारी जिम्मेदारी बढ़ कि हम उनकी रक्षा करें जितगा वेसा की डाल बोटा लगा और वनाग्नि की घटनाओं थे रुकिया। हम तय याद रखन चैणुचा कि प्रेम करुणा सिर्फ इंसानों खुणे नहीं बल्कि हर जीव थे भी वहाँ की जरूरत। तो उम्मीद कर दो श्रोताओं कि आप जरूर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम दरसेला। और सबसे खास बात यह भी श्रोताओं कि हम जो हमारा जानवर पल्या रंदे ना उनका प्रति तो हम बिजाम स्नेह खूब लाड प्यार उन कर दें। लेकिन कद के बार इन भी दिखियों कि कभी हम जंगलों में जन जाना छे है ना तो इन भी देखी मिन कि एक डालम जन की जूड़ ऊँचा बंद ऊँचा लेकिन वहाँ में क्या गौड़ो कंकाल पूड़ी ऊँचा। तो कतका मतलब एक हम इंसान एक मन की खुणा सर्वनाक बात ना कि वे जीव बटे हम जब हमते जरूरत छा तो हम उनमें बटे सब कुछ अर्जित करी है ना दूध छा ये जो भी चीज़ हमते चेणू छा। लेकिन जब वे थे हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनमें थे कह डालम बांध दे आई या जंगलम छोड़ दे आई है ना। तो यहाँ पर हमते सूचना हम तो सुजन चैणू चा। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में आगने बढ़ दें और आप तय सुन दें एक सुंदर सी गढ़वल गीत जहाँ मैं स्वर दी चा चंद्र दत्त सुयाल और दीपा चौहान को तो आवाज सुना।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
4: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, रैबारों से पहले आपन सोनी चंद्रदत्त सुयाल और दीपा चौहान का सुरमई सुंदर सी गढ़वल गीत। उम्मीद कर दो गीत आपते पसंद है वाल। श्रोताओं, अब आप इंतजार में लगन दें विराम और आवाज सुन दें आज को चिट्ठी पत्री को यू खास अंक।

0: आज का अंक मा मैं विनय ध्यानी अपना सभी सुंदर को स्वागत करूं। मैं आर्दगढ़ छन।
1: मैं छु आर्दगढ़ रुचि रावत।
0: आज एक कार्यक्रम मा अपना बहनों की चिट्ठी पत्री पाया कि हम बहुत खुश हूं किला कि हफ्ता भर को इंतजार छ और इंतजार का बाद जब कुछ मिलो छ तो बहुत लगन
1: जी,
0: चाहे वो मेहमान ही किला नहीं हो।
1: हाँ जी,
0: आजकल तो खूब मेहमान आना भाई रूढ़ियों का। ये मौसम मा पक्की बात छे कि अगर आप देहरादून मसूरी या ठंडा इलाकों में छे ना तो मेहमानों को लंग तैयार पक्की बात छे लगनी छे।
1: बिल्कुल।
0: और जो ऐंच वाला छे जो घर में छे वो का खिजान होला
1: ना? ना वो तो ज्यादा ज्यादा ठंडी में जाने ना।
0: हाँ।
1: या कुछ खरीदारी करने वाला तो अभी जाने, अभी वो भी इंतजार हम छिन की उन दो बटे लोग उभु हैं।
0: हाँ ये बात भी छे, लेकिन कते दा आजकल नौकर जमाना आ गया ना।
1: जी
0: लोग जो बोल दे ना कि साहब हम आना छुआ तुम्हारे छोड़ना
1: जी,
0: वो बोल दे ए हम तो वना जाना जमन बदल गया ना
1: जी
0: रड़कान वाल छु रोन बैठ गए, लेकिन हमारा घर गांव में ये भावना अभी कम छ
1: जी
0: और स्वस्थ दिन क्या है कोई आंध है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: और लेकिन अगर हम नए जमाने नहीं छुई कला तो लोग बोल दे फूक नहीं आंत,
1: जी
0: लेकिन हम चिट्ठी बात करना

0: चल गयो आम है ना, चिट्ठी दया छिन छिन ना शुरू करा।
1: जी ध्यानी जी, पहली चिट्ठी आई जा सुधीर जोशी, लाइब्रेरी इंचार्ज राजकीय जिला पुस्तकालय देहरादून बटे।
0: जी स्वागत है आपको जो जी।
1: लिखना चिन्ह की ग्राम जगत की पूरी कुटुम्बदरी तय सेवासौली में आपको कार्यक्रम को नियमित श्रोता छो, लेकिन चिट्ठी पहली बगत लिखनो छो। विगत दिनों में आपको कार्यक्रम में इंदु भारती नवानी की वार्ता से डिजिटल लाइब्रेरी का बारम नई नई जानकारी प्राप्त हुई। वार्ता पुस्तकालय विज्ञान का छात्रों का वास्ता बड़ी उपयोगी छा। 6 तारीख में अनुज डिमरी और विनय ध्यानी जी की वार्ता से जलागम विभाग की नए नए ग्रामीण योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। ई वार्ता पैटाणा का वास्ता ध्यानी जी थे धन्यवाद। दगड़ी ही 9 तारीख मा प्राथमिक विद्यालय खिरसू का बच्चों को किलकारी कार्यक्रम भी खूब भलू लगी। अंत मा आपसे निवेदन की खाडू लापता नाटक सुनाने की कृपा करें बल।
0: बिल्कुल साहब, और यह चिट्ठी आपकी पहली भी है हम थे
1: जी,
0: और वही दिन भी हमने सोची कि चला साहब पुस्तकालय बटे की पुस्तकालय इंचार्ज की चिट्ठी आई छे
1: जी।
0: तो देखा हम आप तो बता दें आपन अपने चिट्ठी पहल कहे हैं मध्य और हैं कन क्या के मेल पर भेजे हमनु कार्यक्रम में शामिल करे लीजिए। और दोबारा आपन दुई आकर और जोड़ी की ये सोची कि कुजान गाय होली कि नहीं गाय होली आपन अपन मेल आईडी बिटे के हम तक पहुंचा ये सब पहली इन्नी चिट्ठी आपक पहली भी अच्छा है। तो खैर हम तो सुंदर लगन चुके कि आप हमारा एक तो नए श्रोता छन और आपन बोली कि पहल दा हम तो ये बोल रहे दूसर दा है ना कि लेकिन एक चिट्ठी आपक पहल भी कार्यक्रम में शामिल हुए गया छ
1: जी। वो गंगतोलम छा शायद
0: हां हां उन चने कि अगर मैं आपक हाथ में दे कि जरा न्यूत लिखा दियो तो कुझान कुझान गंगतो हो देने कि लिखा हो लो कि नहीं लिखा हो है ना
1: जी।
0: तो आपन के हैंक में दे चिट्ठी और तब उन तो लड़का दे लेकिन आप तो भरोस नहीं रह जाने। तो खैर आपक चिट्ठी हम तक पहुंच गई दुया और बहुत सुंदर लगनो छ कि आप तो हमारा कार्यक्रम भला लगना छन किलकारी हो या अनुज डिमरी की जो भेंटवार्ता छे जलागम के विभिन्न गतिविधियों पर वो भी आप तक पसंद है। और खाडू लापता बिल्कुल जै दिन मिलल हम फिर सुनो ला आप है ना, लापता हुई चीज तक खुजान में जर बगत लगो छे है ना। तो निश्चिंत रहा आप तक हम ये नाटक जरूर सुनोला। बहुत बहुत धन्यवाद जोश जी, आप हमारा स्थानीय और नियमित श्रोता छन
1: जी। ध्यानी जी, दूसरी चिट्ठी है इंचा मनोरमा रावत जी की विजय पार्क देहरादून बिटी। लिखना चिन की ग्राम जगत कुटुम्बदरी को रुमुक दा की सेवा सौली और ग्राम जगत पैटाण वालों खुण खूब आभार और आशीर्वाद।
0: धन्यवाद।
1: तुम लोगों की छी बतों को तुड़का ग्राम जगत की दाल मा रसयाण को राज दगड़ियों गीत संगीत सार्थक बातचीत संदेश और नानतीन दान्य सियाणों की दिल की बात को आनंद उठाए की अब पौड़ी जानो छो खुश का खानो को बधाई का ब्योमा समन्या।
0: हाँ साहब आप खुश का बोल दिन हमारे सुख सा बोल दिन कि कुछ और बोल दिन है ना, लेकिन ठीक छ बधाई का ब्योमा जाना छ ये बहुत सुंदर बात है ना। और ब्यो आजकल होना होला
1: आप शुरू हुआ
0: अच्छा शुरू होला हाँ तो बगत पर पेटगिन ठीक छ तो मनोरमा जी बहुत सुंदर यू हुंदी अपनी चिट्ठी
1: जी।
0: के कि अपन चिट्ठी को मतलब यो कि ठीक छ कार्यक्रम सुंदर चलनु छ और उखमा छियों का तुड़को में दाल सुंदर लगनी छ भुटियाण भी आनी छ और भुटी मरचक स्वाद भी आनु छ तो ये है अपने आस वाली चिट्ठी। लेकिन और जब नजदीक हो जान चिट्ठी तब हम लिख दिनो अपनी चिट्ठी में कि अबरदा अफार वही बॉडी की जो थोरिड़ी छे या गौड़ी छे या भैंसी छे उन दियूं या इधर दूध देने आज गाल यू हूं बिल्कुल अपन छुई तो तनी आपन बिले कि बधाई ब्यो में जाना चाहो ना हमारी शुभकामना ब्योल ब्योल था भी और आप थे भी कि आपक यात्रा मंगलमय हो। यात्रा तो चलना है चन पर पौड़ी की यात्रा तो सुंदर से ठंड में रहला है ना
1: बिल्कुल उन भी ध्यानी जी फूफू पहले दिशा ध्यान डान तब
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो फिर चरकबर का भीतर आला ही है ना पूछ भी वेली ये आ गया भाई पूफ आ गया बल है ना
1: हाँ जी।
0: तो भली बात छ और हमारी एक दा फिर आप थे शुभकामना वक भी सुन ला जग भी सुन ला हम तो चिट्ठी लिखो ना बिसरे है ना दो आखर जरूर मोबाइल पर लिख दिया है बहुत बहुत आभार धन्यवाद
1: जी। अगली चिट्ठी है ध्यानी जी वी के सिंह कारगी सीनियर सिटीजन नियमित श्रोता डिफेंस कॉलोनी देहरादून बिटी
0: जी।
1: लिखना चिन्ह की सभ्य प्रस्तुतकर्ताओं थे आशीर्वाद। दिनांक 16 तारीख खुणे कवि गोष्ठी और 17 जून खुणे वंदे मातरम का 150 साल पर प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्की जी, आप भी हमारा जागरूक और नियमित श्रोता छन लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और सिर्फ इतना ही ना कि ग्राम जगत से बल्कि हमारा और ही जो प्रसारण छन उनसे भी आप जुड़े छन ये जाने की बहुत सुंदर बात लगनी छ। और इना जागरूक श्रोता इना सुधी श्रोता जो कि हम ते बात बात पर अड़ा भी दिन कि नरे इन करो बस इन्हीं लोग हम ते चेना चेन इन्हीं श्रोता हम ते चेना चेन कि हम अब तक कुछ निश्चित हुआ बल्कि अपना सुनदरों की जो इच्छा छे उनको जो मार्गदर्शन छे वे का हिसाब से भी हम अपना कार्यक्रम बनावा बोलिया बचिया जखम भी हमसे कोई गलती हों आप हम तक जरूर टोकी रोकी तो हम तो बहुत सुंदर लागल आप तो लोक कवि गोष्ठी अच्छी लगी सच में कवियों ने अपनी दिल की बात पूरी निकाल रहा है ना चाहे वो पेपर लीक बात राहुली चाहे कने पर्यटन की बात रहे सुंदर कविता और ईच कविता की ताकत की वो समाज की बात लोक की बात अपना गीतों में अपनी रचनाओं में कर दें और ये का अलावा आप ते जो ब्यालक कार्यक्रम छो वो भी आप ते पसंद है सच में हमारा जो 150 बरस छन गीत का वंदे मातरम का वो एक गौरवमयी छन और वे को उत्सव पूरे देश मनानु छे तो हमन भी अपन ग्राम जगत कार्यक्रम में ये गीत हैं जगह दे बल्कि एक सुंदर कार्यक्रम वे पर निर्माण कार वे को और हम तो ये जाने कि निर्माण का दौरान ही काम कर दौरान बणान वे रूपक थे लगी कि अरे गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी वंदे मातरम तले कि लोग इतना उत्साहित छाया इतना चेतना को गीत छायो हमारो बहुत सुंदर लगी हम तभी जाने के और हमारा विशेषज्ञों की जो वक्तव्य छाया वो भी बहुत जानदार छाया और जो एक गीत हमारा वे में शामिल करियो जो कि अनुवादकार छाया स्वतंत्रता ग्राम सेनानी ने वे तभी हम वे रूपक में शामिल करी और ये के अलावा एक गीत और जो कि याद दिलाया हम था तिवारी जी ने जो कि एक कार्यक्रम अधिकारी छन पूर्ण पुस्तकालय में उनको जो वक्तव्य छाए वो कमा जो गीत छ वंदे मातरम और वो एक नई शक्ल को गीत वो भी हमारा जो गौरदा छन इन बोले जाके जनगीत का लिखवार उनको लिखो गीत भी उखमा शामिल हुए गए तो हम तो लगे अरे वाह ये तो बहुत सुंदर कार्यक्रम बन गया तो आभारी छो हम कार कीजिए आपका कि आप तो हमारा सभी कार्यक्रम पसंद है और खास करी को जो विशेष कार्यक्रम होंगे जो पर हमारे विशेष जोर रेंद और खूब मेहनत करी रेंद हफ्तों भर तक हम वो कार्यक्रम तो बनाने की कोशिश करता जब वे पर आप लोग शाबाशी देने तो लगत कि हाँ भाई चटचटाक आप कुछ नहीं करी जा बहुत बहुत धन्यवाद
1: ध्यानी जी अगली चिट्ठी है जा विकास सकलानी ग्राम बुलेखा पोस्ट ऑफिस कलीघाट पट्टी बिचला बदलपुर जिला पौड़ी गढ़वाल हाल निवास प्रहलादपुर दिल्ली बिटी
0: अच्छा
1: लिखना छिन की प्रिय ग्राम जगत परिवार थे प्रणाम आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने पर आकाशवाणी परिवार थे शुभकामना रेडियो और हमर संबंध बहुत ही गहरू और प्यारू और हमेशा ही इन निरालू राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुदेसु की किलकारी बहुत ही प्यारी लगी मजा आएगी वल
0: अच्छा
1: गर्मी की छुट्टियों पर राजीव थपलियाल जी की वार्ता बहुत अच्छी और सीख देन वाली छा बाल मजदूरी पर भूपेंद्र सिंह लिंगवाल जी का दगड़ी भेंट वार्ता अच्छी छा बाल मजदूरी समाज का वास्ता एक अभिशाप च यहाँ थे रुकुन चेणु 16 तारीख हुए लोक कवि गोष्ठी प्यारी छा आकाशवाणी का 90 साल मन की और मोबाइल पेपर लीक और पर्यटन जन रचनाओं दिल जी दिल पर
0: बिल्कुल ठीक बोलिए आपन ब्याह कार्यक्रम में सुन साग जाना और हो सकत के सुन ओल तो अब इधर लग ला है ना बहुत बहुत आभार के आप तो हमारा सप्ताह भर का सभी कार्यक्रम पसंद है और सकलानी जी हम तो बोलना कि जब कोई कार्यक्रम एक कुटुंबदारी बन जाते परिवार बन जाते यहाँ मतलब हमार और हमारा श्रोताओं को कितना बढ़िया रिश्ता छ न तो कहीं बना कि साहब ग्राम जगत कार्यक्रम की जगह है ग्राम जगत है कुटुंबदारी ये बड़ी बात है ना
1: सही बात
0: तो कुल मिलाकर हम आपक ध्यान रखता आपक गौ करदा और आप तो उतना ही स्नेह हम भी करदा जितना आपका नाचन तो सच में तभी कोई भी कार्यक्रम एक परिवार का तौर पर हम मनन बढ़ जाना जब हम अपनी बात हों दुख में अपन मिठास हों अपन टकरार भी हो जान के बके बत है ना हमारा श्रोता भी तो कहके बस सिरड़े जन बोल दे हमन तीन चिट्ठी भेजे एक भी निकार तुम शामिल तो आप गुस्सा भी हम बिल्कुल अपन मन में धर दें कि कोई बात नहीं छाए वे जान हमसे भी गलती हूं मन खिंचो है ना
1: जी
0: तो जब ये बात हूं तो सचेत में वो परिवार ही लगत और रोज परिवार में नई सदस्य भी आना रहते नई बात होने रहते नए मेहमान भी आ जाते वो भी वही परिवार का हिस्सा बन जाते चाहे वो कवियों की शक्ल में देखा कितना सुंदर सुंदर मोबाइल पर जो रचना छे सचेत में तो बहुत ही अच्छी छे कि लेकिन जमनू कुझाण कुझाण हम तक कख ले जाने और जब हम रिश्तों की और परिवार की बात करना चाहो वो मोबाइल बीच में आ जाना
1: बिल्कुल ध्यान जी सही बुना चाहे आप कि परिवार की हम जब हम बात करना की मोबाइल बीच मानो हूणो इन नीचे जब हम दी लोग अगर हम भी बात करना चाहे तो ज्यादा करके उनकी एक और ध्यान तो फोन में रहो दूसरा सुर एक बार बुनू, दूसर बार बुनू, तीसर बार भी दे बिगु सही है जान कि भाई
0: हाँ
1: देख ली थे, फोन ही देख ली।
0: वही तो हम मिलना खुण जाए रहे ना वो बाबू था या काका बड़े था
1: जी
0: और फोन पर रहना तो के खुण है हम मिलना खुण छुई लगा लो जरा दुई चार
1: जी
0: तो ये छाए हुई कविता को सार भी और ये के अलावा बाकी और ये कार्यक्रम आपते सुंदर लगी हम आपका आभारी छुआ सकलानी जी
1: जी
0: सदन आपक चिट्ठी आने रहने हम तो बहुत सुंदर लगे कि आप दिल्ली में रह कि अपन घर गों थे भी याद कर देना और दुए जगहों को पता लग दिन तब लगत हम तो कि हाँ भाई एक चिट्ठी ना बल्कि तो दुई लेकिन है ना
1: बिल्कुल जी
0: बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी ध्यानी जी, अब कार्यक्रम में अग्नि बढ़ दें और अपना श्रोताओं से सुन दें ये सुंदर सी कुमावनी गीत स्वरचित जगत सिंह धपोला को।

0: श्रोता भाइबंधु, अभी आपने जगत सिंह धपोला का स्वर मा सुन यो कुमाऊनी गीत। एक नई शैली को गीत है और एक नई तरीके से जो हम सोचदा के सब संगीत इन भी हो सकत, तो सच में संगीत भी विलक्षण बिल्कुल अद्भुत और गवैया भी हमारा बहुत पुराना गवैया छन। तो यो गीत हमन आप तक पहुँचाया और हमारी कोशिश है कि चाहे वो जौनसार बटे हो, कुमाऊं बटे हो, गढ़वाल बटे हो, कोई एक पुराण गीत अपने चिट्ठी पत्रिका अंक में हम जरूर शामिल करना। तो अब द्वारा का जो हमारा सुनदारा छिन्न जो हम तक चिट्ठी भेजी उनको आभार भी हम जरूर प्रकट करला।
1: ध्यानी जी, अभी एक और चिट्ठी कार्यक्रम में
0: कोई बात नहीं चिंता
1: जी।
0: पहला
1: ध्यानी जी चिट्ठी जा विनीता थपलियाल जागृति विहार नेहरू ग्राम रोड नथनपुर देहरादून बिटी लिखना छिन्न की ग्राम जगत की पूरी कुटुम्बदारी और सभी श्रोताओं थे विनीता थपलियाल जी की तरफ बटे सेवा सौली नमस्कार। विगत 6 तारीख माँ अनुज डिमरी और विनय ध्यानी जी की वार्ता से जलागम विभाग द्वारा संचालित नए नए ग्रामीण योजनाओं का बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। वार्ता ग्रामीण क्षेत्र माँ रहने वाला लोगों का वास्ता बड़ी उपयोगी छा। एक अलावा 8 तारीख माँ मीना कुमोला को पल्या गांव का मोहना त्वेमा लगी मिरुमना गड़वल गीत खूब भलू लगी। ये गीत है पैटाणा का वास्ता रुचि रावत जीत है धन्यवाद पैटाणो छो। दगड़ी ही 9 तारीख माँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुदेशु खिड़सू का बच्चों को किलकारी कार्यक्रम सुनने की मन गदगद वेगी। आपसे निवेदन चकी खाडू लापता गडवल नाटक सुनाने की कृपा करें।
0: खाडू लापता सुनना को अनुरोध आपन भी करें विनीता जी। और खास करे की मुझे रुचि जी ने जान मुझे क्या चिट्ठी उठाया कख माँ के उनकी तारीफ है जरे है ना। तो यु गीत आप तक जो पसंद आया वो रुचि जी ने आप तक पहुँचा है कार्यक्रम में शामिल कर वो आप तक पसंद आ गया, बहुत बहुत आभार। ये अलावा खिलकारी आपन सुन जलागम पर जो भेंटवार्ता छे वो आपन सुन पसंद कर बहुत बहुत आभार। और जन के मन पहले भी बताया जो जीते हैं कि मिला लू खाडू लापता तो जरूर
1: आप तक लड़ो ध्यानी जी खुजानी पड़ल खाडू
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम सुनोला जय दिन भी भगत हम तो फुर्सत तक मिलल जरे से तो हम वही नाटक था कि भी आप तक पहुँचोला। तो आप तो बैर आ जाए ना इतवार वालों की
1: बिल्कुल
0: पढ़ो
1: जो इतवारा दिन जो श्रोता हम दगड़ जुड़े छा उछा विजय कार की विनीता थपलियाल दिनेश चंद थपलियाल महावीर विष्ट मनोरमा रावत धीरज शुक्ला प्रियंका नीतू बिंजोला कमल देवराड़ी प्रेमनगर देहरादून बेटी।
0: बहुत बहुत आभार आप सभी को किले कि आप भी अपने चिट्ठियों के माध्यम से अपने ईमेल के माध्यम से हमर दगड़ जुड़ी एतवारा दिन अपना अनुरोध गीतों का खातिर। तो अब जो भयबंदा हम तय लिखण चाहना छिन कुछ बोलण चाहना छिन तो हम तय चिट्ठी जरूर भेजा।
1: हमारे पता चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com
0: ये पता पर आपक चिट्ठी हम तक मिल ली जे दिन जे भगत आप गाँव आनी ची वे भगत ही लेख दिया वे कुछ दिन बार करने की जरूरत नहीं ची। हम भी प्यार तक इंतजार कर दा कि चलो आज एतवारा दिन ही लेख आ लून कोई बात नहीं सोमवार को लेख आ कोई बात नहीं
1: जी।
0: तो शामिल हम इकट्ठा आज एक दिन पर कर देना क्या कि साप्ताहिक तौर पर आप तक पहुँचाना को हमारे कार्यक्रम छ आपक चिट्ठियों को कार्यक्रम छ। तो भरे जरस भी अवकाशाट नहीं करें कि न साहब छोड़ो हाँ ठीक छा कार्यक्रम अब क्या लिखना है हमारे लिखियाल क्यों होनो आप तो पता ही नहीं कि आप नहीं लिख ला तो कार्यक्रम बंद हो जाए है ना। तो खास बात यह है कि आप अपना बात विचार हम तो लेख के जरूर भेजा। और हाँ अगर आप ईमेल नहीं भेज सकना चिन्ह तो संकोच नहीं करो अपन सामान्य और साधारण डाक से हम तो अपनी चिट्ठी भेजना हमारे पता च चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001। तो अब है एक दा फिर भी प्यारा दिन आप लोगों का दगड़ी आपक चिट्ठियों का दगड़ी हम उपस्थित होला तब तक खातिर मिथ्या आज्ञा दिया लेकिन सुनना रहा कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुन आज को चिट्ठी पत्री को अंक। और अगर आपन चिट्ठी नहीं भेजी है हफ्ता, तो आप अगले हफ्ते हम तक चिट्ठी भेज सकते हैं। हमारे चिट्ठी को पता चु चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। श्रोताओं, अब आप था लेके चल दो जौनसार का छोड़ और सुन दो रेशमा सा का गयू सुंदर सी जौनसारी गीत।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
4: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
6: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
5: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
6: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
5: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
6: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
5: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

श्रोताओं, गीत और रैबारों का बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपने बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। श्रोताओं, अभी आपन सुन रेशमा साह का स्वरमई सुंदर सी जानसारी गीत और उम्मीद कर दो गीत आप तय पसंद है वालों। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में शामिल कर दें एक और कुमाऊनी गीत जी हम स्वर दियों ज्योति उप्रेती को, तो आवाज सुनाई सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, ज्योति उप्रेती सती का गया है सुंदर सी कुमावनी गीत का दगड़ी है। अब भगत बेगी उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को तो घड़े कमी सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सभी तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा। और बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मियों को राहत देने और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक होने के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 2024 करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े प्रस्ताव के तहत यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
3: प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और किसी भी अफवाह या भ्रम से बचें।
5: हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को सम्पन्न करवाएं।
3: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण, उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यालय पूर्व सैनिकों और परिषद के बीच समन्वय स्थापित करने तथा जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने का केंद्र बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। सचिव ने पैनल अधिवक्ताओं को पात्र और जरूरतमंद लोगों को समयबद्ध, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अधिवक्ताओं को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ करना चाहिए। बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 22 प्रशिक्षण बेंचों के माध्यम से 440 युवाओं को विभिन्न रोजगार परक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने बताया कि बागेश्वर, कपकोट, गरुण और शामा समेत जिले के कई क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
6: जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में अभी हमारे दो जो जॉब रोल हैं, एक तो टेलरिंग का, दूसरा है असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का, हम अपने संस्थान के कैंपस में ही चला रहे हैं। इसमें डिफरेंट जॉब रोल के अकॉर्डिंग हमारे पूरे जिले में काम चल रहे हैं और यहाँ वर्तमान में दो बैच है जिसमें से अलग अलग मॉड्यूल और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रेनर्स है उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी तीनों ब्लॉक में हमारे एट प्रेजेंट अभी 30 बैचेस में ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें ब्यूटी वेलनेस का भी ट्रेनिंग है, एपन क्राफ्ट का भी है, स्टिचिंग का भी है, अपैरल सेक्टर्स में भी है। इस तरह से पूरे जिले में डिफरेंट जॉब रोल पर, डिफरेंट लेवल पर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित हो रही है।
3: प्रशिक्षण ले रहे युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फैशन डिजाइनिंग के प्रशिक्षणार्थी जानकी दानू का कहना है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपना बुटीक खोलेंगी।
7: मैं जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में सिलाई सीखती हूँ और आज तक मैंने सूट की कटिंग, सिलाई और कंप्लीट सूट बनाना मैंने सीख लिया है और यहाँ मैम भी बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं और हमें यहाँ सीख के बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम ऐसे सीखते रहेंगे और अपना बुटीक खोलेंगे और जिसमें हम लोगों को भी काम दे सकते हैं और अपना खुद का रोजगार भी कर सकते हैं।
3: चंपावत जिले में 20 जून तक जन कल्याण मेलों और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लोहाघाट नगरपालिका परिसर में आयोजित जन कल्याण शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी कविंद्र रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
8: केंद्र सरकार एवं उत्तराखंड शासन के जो भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में शिविर का आयोजन करना था, तो इसमें हमने आज विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और कई लोग भी अपने लाभ उठा रहे हैं इस कार्यक्रम शिविर का और इसमें कई प्रकार की जो नई नई योजनाएं हैं उनको जानकारी दी जा रही है।
3: शिविर में आए भैरव दत्त राय ने सरकार की इस पहल की सराहना की।
9: मेला लगाया गया है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आई हैं और आयुर्वेदिक विभाग के लोग भी इसमें, होम्योपैथी के लोग हैं और एलोपैथिक के लोग भी हैं। साथ ही साथ यहां पर राशन कार्ड की KYC वगैरह का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है और विद्युत विभाग की ओर से भी यहां पर हमारे जेई साहब स्वयं बैठे हैं अपने दलबल सहित। काफी अच्छा प्रयास सरकार का है कि जनता के द्वार जा करके इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। यहां पर हम भी अपने दवाइयों के बारे में यहां पर ले रहे हैं कि आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं वो यहां पर निःशुल्क वितरण की जा रही है। बहुत अच्छा लगा और सरकार इसी प्रकार से आगे भी ये आयोजन जो है न्याय पंचायत स्तर में गांव-गांव में करे तो और अच्छा लगेगा, लोगों को लाभ होगा।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई और बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
11: PLI है ना?
12: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: समाचारों का बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपने बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत मा मिछ आप दगड़ी रुचि रावत। श्रोताओं, हर साल देश में हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हों दिन या में सबसे बड़ी संख्या जवान लुखों की हों। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, मोबाइल फोन को उपयोग करते भगत वाहन चलाण, नशे की हालत में गाड़ी चलाण और लापरवाही सड़क दुर्घटनाओं को प्रमुख कारण छे। सड़क दुर्घटना केवल एक मन की तय ही ना बल्कि पूरा परिवार तय प्रभावित कर द। कई परिवार अपना प्रियजनों तय खो दिन दिन जबकि कद गई लोग जीवन भर खुणा घायल या दिव्यांग भेजन दिन। श्रोताओं, अगर हम सभी लोग यातायात नियमों को पालन करें, हेलमेट सीट बेल्ट को उपयोग करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलौला तो दुर्घटनाओं में रोक लग सकत। खासतौर पर युवाओं की यामा महत्वपूर्ण भूमिका छ। उनते स्वयं जागरूक होना का दगड़े दगड़ी दूसरों थे भी सड़क सुरक्षा का प्रति प्रेरित करन चेणु। श्रोताओं, हम दिग्दर्श हैं कि सड़क हम लिखियो रान की दुर्घटना से देर भरे तो क्या क्या कि सरकार भी हम थे जागरूक करनी चाहिए क्या का वास्ता सिर्फ हमारा जीवन का वास्ता। तो आप सभी लिखूँ थे मैं विनती कर दूँ कि सड़क जो भी यातायात का जो भी नियम चिन्हों का पालन करें। ठीक छ, आप श्रोताओं इन कर दें कार्यक्रम में आगना बढ़ दें और सुन दें जितेंद्र पवार का गयो सुंदर सी गढ़वल गीत।

श्रोताओं, मीना बिस्ट का गया ये सुंदर सी कुमावनी गीत का दगड़ी ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम बेक में संपन्न हूँ। अपर दगड़िया रुचि रावत है दयावा अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर शाम के 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में कीर्ति जखमोला। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को निर्माण कार्य ली। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का वास्ता प्रस्ताव थे मंजूरी दियाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाला सभ्य श्रद्धालुओं से शांति अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कही ची। और मेरठ से ऋषिकेश थे प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना खुनी सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू हुआ लू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों को निर्माण करा ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों का अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को निर्माण को 18,900 करोड़ से ज्यादा रुपया आवंटित कराया छी। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना की प्रगति को आकलन करने को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करे गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग का सचिव रोहित कंसल काई। बैठक में राज्यों का वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमान का अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया छी। ये में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित करे गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानकों का अनुरूप उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव थे मंजूरी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य से भूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना थे भी स्वीकृति प्रदान करी गई। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा खच्चरों को बीमा प्रीमियम को 20% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करे

0: घटनाको संज्ञान लिउँछु। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी हेमकुण्ड साहिब यात्रा पर आणवाला सभ्य श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कही छ। उन बोली कि हेमकुण्ड साहिब देश को प्रमुख आस्था केन्द्रों में बटी एक छ, जक हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन खुणी पहुंची दी। मुख्यमंत्री बोली कि यात्रा को उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा छ। उन बोली कि सभी श्रद्धालुओं थे धार्मिक मर्यादाओं और स्थानीय परंपराओं को सम्मान करी यात्रा करन चैंद। श्री धामीन बोली कि कै भी प्रकार को विवाद, उकसावा या कानून व्यवस्था ते प्रभावित करण वाली गतिविधियों से बचन आवश्यक छ। प्रदेश में राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड खुनी निर्धारित आय सीमा की समीक्षा करी जाली। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से यहाँ खुनी समिति गठित करी वर्तमान मानकों को पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बोली कि राशन कार्ड खुनी निर्धारित आय मानक काफी पुराना होगी, जैसे कई पात्र लोगों थे योजना को लाभ मिलने में परेशानी होनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं को नवंबर माह बटे लंबित लाभांश एक सप्ताह का भीतर जारी करे दिए जालू। उन अधिकारियों थे आगामी 30 जून थे राशन वितरण प्रणाली थे पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्देश भी दिए।
1: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ, तो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन अपात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सत समय में सूचना नहीं देंगे, अविगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी, तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छ।
0: मेरठ का मोदीपुरम बटी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला थे हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू करना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई छ। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का बीच मेरठ बटे ऋषिकेश थे RRTS नेटवर्क को विस्तार पर सहमति बन गई। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना खुनी जल्दी सर्वेक्षण करे जालू। पेश च एक रिपोर्ट।
3: प्रस्तावित योजना के अनुसार नई रेल ट्रैक मेरठ का मोदीपुरम स्टेशन से शुरू है की मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होंदी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला क्षेत्र तक पहुँचलू। परियोजना को लगभग 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में ची। नमो भारत ट्रेन का संचालन से दिल्ली और ऋषिकेश के बीच यात्रा को समय वर्तमान 5-6 घंटा से घटी की लगभग 2.5-3 घंटा रह जाने की संभावना ची। ये सी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होली। गौरतलब छे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करी की ये संबंध में प्रस्ताव सौंपी छ। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज देहरादून स्थित अपना शासकीय आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों दगड़ योगाभ्यास का ही। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व में भारत अल योग की प्राचीन परंपरा थे वैश्विक पहचान दिलाई। उन बोली कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को माध्यम नीच बल्कि मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन को आधार भी च। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर पर आयोजित होने वाला योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ी के भाग लेने को आग्रह किया। उन बोली कि सभ्य लोग योग थे अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना के स्वस्थ और निरोग जीवन की दिशा में कदम बढ़े। चंपावत जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ आम जनता थे पहुंचाने का उद्देश्य से जन कल्याण मेलों और शिविरों को आयोजन करे जानु च। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताई कि यूं मेलों को उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं थे सुनुना का दगड़ी विभिन्न कर्मचारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाण च। उन बोली कि चंपावत नगर पालिका सहित विभिन्न विकास खंडों में शिविरों को आयोजन शुरू हो गया। ये शिविर आगामी 20 जून थे जिला का सभ्य 4 विकास खंडों और 5 नगर निकाय क्षेत्रों में आयोजित करे जालू।

0: जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील कही छे कि वो निर्धारित तिथियों का अनुसार अपना क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पहुंची की विभिन्न सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जन कल्याण मेला समस्त हमारे पूरे जनपद अंतर्गत चल रहा है। इसमें सम्मानित नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मांगे हैं, उन सभी का क्रियान्वयन घोषणा जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से किया जाना है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह है, आप वहाँ पे अपने जो आवेदन है उसको लेकर के आए और उसमें जो अधिक से अधिक लाभ जो है उसको प्राप्त करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एकदा फिर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को निर्माण कार्य ली। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव थे मंजूरी दियाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभ्य श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द बने रखने की अपील कही। और मेरठ से ऋषिकेश ने प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना खुणी सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू हुआ लो। ये का दगड़ी गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। अब किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

सभी किसान साथियों को दीपा बकासी का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि जगत में। जब सूरज की पहली किरण खेत की मेड़ों पर पड़ती है तो सबसे पहले जागती है हमारे किसान साथियों की उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो बीज के साथ मिट्टी में बोई जाती है और फसल के रूप में लहलहाकर उनके पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटती है। लेकिन हमारे लगभग हर किसान साथी जानते हैं कि फसल केवल बीज और पानी से नहीं उगती, उसके पीछे छिपा होता है मिट्टी का स्वास्थ्य, खेत की ताकत और हमारे किसान साथियों की समझदारी। समझदारी इस बात की कि अपनी मिट्टी को स्वस्थ कैसे रखा जाए, क्योंकि अच्छी फसल की शुरुआत ही होती है स्वस्थ मिट्टी से। किसान साथियों, जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन करते हैं, उसी तरह हमारी मिट्टी को भी संतुलित उर्वरकों की ज़रूरत होती है। आज भी हमारे कई किसान साथी अच्छी पैदावार की उम्मीद में खेतों में यूरिया का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जबकि होता इसके बिल्कुल उल्टा है। यूरिया फसल को हरियाली तो देता है, लेकिन केवल हरियाली ही अच्छी फसल की पहचान नहीं होती है। पौधों को मजबूत जड़ें बनाने, फूल और फल विकसित करने तथा रोगों से लड़ने के लिए फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और जब हम अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इसे ही संतुलित उर्वरक प्रबंधन कहा जाता है। किसान साथियों, इस विषय पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी लेते हैं एक संगीत में विराम और सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: किसान साथियों, आप अपने खेतों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि आपके खेतों की मिट्टी की सेहत को बनाए रखता है। तो देखा आपने इससे कितना लाभ मिलता है आपके खेत को। संतुलित उर्वरकों का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको समय समय पर अपने खेतों की मिट्टी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और आप उतनी ही उचित मात्रा में उस पोषक तत्व का प्रयोग अपने खेतों में कर सके। यदि आप अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं तो उसके साथ जैविक खादों का उपयोग भी अवश्य करें। गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने यानी कि पानी को सोखने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही लाभकारी सूक्ष्म जीव भी सक्रिय रहते हैं और पौधों को पोषक तत्व लंबे समय तक मिलते रहते हैं। किसान साथियों, इस बात को हमेशा याद रखें कि मिट्टी केवल आज की फसल के लिए नहीं है, बल्कि ये मिट्टी आने वाले कई वर्षों में भी हमारी खेती का आधार बनेगी। यदि हम आज अपने खेत की मिट्टी का ध्यान रखेंगे तो मिट्टी भी आने वाले समय में हमारा साथ देगी और हमारी फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। श्रोताओं, खेतों में अच्छी फसल केवल अधिक उर्वरक डालने से नहीं, बल्कि सही मात्रा और सही समय पर सही उर्वरक डालने से मिलती है। तो आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, जो कि आप किसी भी कृषि केंद्र में जाकर करवा सकते हैं। तो आज ही बल्कि अभी से अपने खेतों में सही उर्वरक का प्रयोग करके अपनी फसल उत्पादन और अपनी आय दोनों को दिन दूना रात चौगुना कीजिए। और चलिए, अब वक्त हुआ है भेंटवार्ता सुनने का, जिसका विषय है चार धाम यात्रा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। डॉक्टर सुशांत राज से और इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा।
4: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे चार धाम यात्रा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आचार्य डॉक्टर सुशांत राज को। डॉक्टर सुशांत राज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
5: धन्यवाद आपका
4: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि चार धाम यात्रा अभी चल रही है और हमारे देशवासियों में और जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, विदेशों में भी रहते हैं, उनमें भी उत्तराखंड की ये जो चार धाम यात्रा है इसको लेकर मन में बहुत ही श्रद्धा है, तो ये चार धाम यात्रा है, इस यात्रा के प्रति हमारे देश के लोगों में और खासतौर से बात करें जो हिंदू समाज के लोग हैं, इस आस्था का कारण क्या है, जानना चाहेंगे इसके बारे में।
5: उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा, ये असल में सदियों पुरानी जो है ये एक इतिहास है, और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, कहा जाता है कि इन धामों का अगर आप दर्शन कर लें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। जीवन पर्यंत लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरह तरह की साधनाएं करते हैं, तरह तरह की विधियां अपना, तो इसीलिए उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास जो है ये सदियों पुराना है, और ये मुख्य रूप से जो है ये पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा है। इसे 8वीं शताब्दी के जो है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा एक संगठित तीर्थ यात्रा के रूप में स्थापित किया गया, और आदि शंकराचार्य उन्होंने इन चारों धामों का, मंदिरों का जीर्ण उद्धार भी किया था, तो इसीलिए हिंदू धर्म में विशेष तौर से कहा गया कि इस मार्ग पर जाने पर इनके दर्शन करने मात्र से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती, जिसके लिए साधु संत, आपने देखा होगा कि कई समय की साधनाएं, ध्यान, अपने जीवन वर्षों लगा देते हैं, इसकी दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, हिंदू समाज ही नहीं, बहुत से समाज के लोग जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे वेद पढ़ते हैं, वो गीता पढ़ते हैं, तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति तो तब उन्हें पता लगता है कि इस धर्म में क्या विधियां जिससे हम आराम से जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लें।
4: जी, अगर हमारे चार धामों की, जो उत्तराखंड के चार धाम है, इनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानना चाहें,
5: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसकी सांस्कृतिक विधाओं पर भी मैं आता हूँ धीरे धीरे। पहले आप इसके बारे में जाने की बद्रीनाथ का क्या महत्व है, क्यों है और उसकी क्या महत्वता है, तो आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा तो आपको सरलता से पता लगेगा कि बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के बाईं ओर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने हजारों साल पहले यहाँ तपस्या की थी। और बद्रीनाथ मंदिर के पास व्यास गुफा है। और साथ में अगर हम इसमें देखें कि हिंदू धर्म के हिसाब से कथाएं भी बहुत सारी हैं कि जालंधर का वध किया गया था, तब वो क्योंकि बहुत बड़ा राक्षस था जिसको हराना बड़ा मुश्किल था, तो भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची कि वो जालंधर का रूप किया और उनकी पत्नी वृंदा के सामने प्रकट हुए तो उनका सत्व जो है वो नष्ट हो गया और उसके बाद उनकी शक्ति जो है समाप्त हो गई और वो जालंधर पर विजयी हुए। तो ऐसा भी माना जाता है कि उस काल में जब हिमालय क्षेत्र में राक्षसों का आतंक हो गया तब देवी ने उनका विनाश किया और एक दैत्य माता के प्रकोप से बचने के लिए जो है बद्रीनाथ के मंदिर में वो शंख के अंदर जाकर छिप गया। आपने देखा कि विष्णु जी ने ही धारण किया है शंख और हर जगह जो है विष्णु जी का मंदिर हो जहां भी वहां पे शंख बसता है। लेकिन यहाँ दूसरा है कि ये बद्रीनाथ उनका साक्षात स्थान होते हुए क्योंकि एक दैत्य उसके अंदर प्रकोप से बचने के लिए चला गया था तो आज भी बद्रीनाथ मंदिर में जो है शंख नहीं बजाया जाता क्योंकि कहा जाता है कि अगर शंख बजाएंगे तो वो राक्षस बाहर आ जाएगा, इसीलिए सदियों से जो है वहां पे शंख नहीं बजाया जाता है। अब इसी तरह से अगर हम केदारनाथ मंदिर को देखें तो ये भी कई सौ साल पुराना है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। केदारनाथ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित जहां पर कठिन यात्रा के बाद पहुंचा जाता है और मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यहीं पे देवता का पूजा वो लिंगम के रूप में की जाती है। और महाभारत के युद्ध के बाद पांडव ने भगवान शिव की जो है पूजा की थी और केदारनाथ मंदिर की स्थापना भी की। और मंदिर के पास पवित्र स्थान है जैसे शंकराचार्य, कालीमठ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग और समाधि स्थल भी यहाँ पे जो है स्थित है। इसी पे जब आपने चारों धाम की बात करी है तो इसमें अब हम आ जाते हैं कि माता गंगा की भी आप बात करेंगे,
4: गंगोत्री धाम की।
5: बिल्कुल आपने सही बोला है। तो राजा भगीरथ की जो है कठोर तपस्या से है गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई और ये पवित्र स्थान जो है गंगोत्री धाम के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगोत्री को जो है माँ गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है और ये शुरू हुई है माँ गंगा से, यहाँ से शुरू होकर गंगा सागर पर जाकर मिलती है। तो गंगोत्री में स्नान करने से आपको पता है कि आदि अनादि काल से भी जो है पाप धुल जाते हैं, इसीलिए लोग हरिद्वार में आते हैं, चाहे वो विदेशों में रहें कहीं भी रहें, कहीं मृत्यु भी हो जाती तो लास्ट में यहीं पे जो अंतिम समय में आके मोक्ष के लिए उनका जो है अस्थि जो है विसर्जित किया जाता है, पूजन आदि की जाती है। तो वो गंगा जो जिसको पवित्र मान, आज भी जो है साइंस उसको प्रूफ नहीं कर पाया कि उसमें ऐसे क्या तत्व हैं, ऐसे क्या चीज है, ईश्वर की शक्ति मान लीजिए, चाहे आप उसको केमिकल बोलते हैं आज के समय में वैज्ञानिक, लेकिन आज भी वो ईश्वर की शक्ति है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो अपने आप में वो एक अमृत का स्रोत है। और अब हम आते हैं चौथे उसमें, तो गढ़वाल हिमालय के जो सबसे पश्चिम मंदिर वह यमुनोत्री का स्थान जहां पवित्र नदी यमुना का जो है उद्गम होता है। अब जानकी चट्टी में जो है वह गर्म पानी के झरने हैं जहां तीर्थयात्री जो है यमुना मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसमें जो है डुबकी लगाते हैं। और बहुत पहले टिहरी गढ़वाल के महाराज जो प्रताप शाह थे उन्होंने देवी नदी का मंदिर भी बनाया था जहां पर सूर्य कुंड स्थित है और यमुनोत्री धाम सूर्य पुत्री यमुना और यमराज के रहस्य भी जुड़ा है। तो ये भी इस वजह से भी यमुनोत्री का बहुत महत्व, क्योंकि यमराज से तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया ही घबराती है, तो उनका आशीर्वाद है तो सबको चाहिए लंबा जीवन। अब ये चारों धाम जो होते थे पहले इनमें जाना बड़ा मुश्किल होता था, लोग बोलते थे कि पहले पूजा पाठ करके जाएं दोबारा दर्शन हो ना हो।
4: डॉक्टर सुशांत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं पहले किस तरह से अपने आप को तैयार करें यात्रा पर जाने के लिए।
5: हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है सवा महीने पहले जो तीर्थयात्री होते थे, क्योंकि आप लगाइए कि सवा महीने इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले समय में व्यक्ति जो है वो पैदल जाता था
4: जी।
5: और परिवार से लेके, अब आप लगा लो कि दिल्ली से अपने देहरादून आने में उस समय 5-7 दिन लग जाते थे। आप जैसे जैसे अभी आज के समय देखते हो कांवड़ तो रोड अच्छी है तो भी लोगों को 2-3 दिन लगते, तो उस समय कितना समय लगता होगा और उसके बाद यहाँ से केदारनाथ जाने में कितना समय लगता। उसमें इतनी शुद्धता होती थी सवा महीने में कि वो अपने रुद्राक्ष की माला, भोले की अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो जाप करते हुए उनके विशेष मंत्र करते हुए और एक कपड़ा, बिना सिलाई वाला कपड़ा जिसे बोलते हैं ना, वो पहनते थे। उसको पहनने के बाद मंत्र उच्चारण करते थे और भोजन बड़ा सादगीपूर्ण होता था जिसमें कि बिना तड़के वाला भोजन जो एक साधु करता है और हाथ से बनी हुई रोटी रस्ते में जो अग्नि कुंड होते थे, छोटे छोटे हवन कुंड बनाए होते थे, तो उसमें वो पकाकर उसका भोजन वो भी एक समय करता था कि उसका त्याग देखिए कि वो इतनी ऊर्जा खर्च कर रहा है लेकिन एक समय भोजन करके, और उस आधार पे वो भगवान के नाम जाप करते करते जाते, उसे पता था कि मैं अपने अंतिम समय पे जा रहा हूँ। तो वो यात्रा जो मानी जाती थी मोक्ष की मानी जाती
4: थी। जी, आपने डॉक्टर सुशांत राज जी ये जो बातें बताई ये तत्कालीन समय में करते थे, हम आज की आधुनिक समय की बात करेंगे, है ना। आज के समय भी बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं चार धाम की यात्रा के, और हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनका भी एक विजन है, दर्शन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं चार धाम यात्रा पर आए और दर्शन का जो लाभ है वो लें। तो आज के समय जब व्यक्ति जाए दर्शन के लिए तो किस तरह से खुद को तैयार करे, क्या क्या चीजें खान पान में जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार किन चीजों का पालन करे।
5: अब आपने जब बात ही करी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, तो उस आधार पर मैं उसमें आता हूँ कि 1962 से पहले और 50 के दशक तक में बहुत ही दुर्गम स्थिति होती थी यात्रा की, ठीक है। सिर्फ वहां पे घुमंतू लोग ही जाते थे, साधु सन्यासी आपने देखा नहीं होगा क्योंकि कोई बुजुर्ग या कोई घरेलू आदमी वो जा रहा है। और भारत चीन युद्ध के बाद भी जो है भारत सरकार ने काफी चीजें कार्य की, लेकिन आम लोगों के लिए यात्रा सुलभ की गई जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है कुशल रणनीति कारगर साबित हुई, और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के विजन जो आप कह रहे हैं
4: जी
5: उसके तहत चारधाम यात्रा को और सुरक्षित और सुव्यवस्थित की गई। तो उसके लिए क्या किया गया है कि पहले ही कहा गया है लोगों को कि आप, क्योंकि अब तो सरल हो गया ना, लोग एक दिन में भी जाके आ रहे हैं हेलीकॉप्टर द्वारा जा रहे हैं,
4: ठीक।
5: तो अब ये सवा महीने का सिस्टम कैसे करें क्योंकि आज सब व्यस्तता है। तो अब जो नियम है कि आप अपने घर में जहां आप रहते हैं, अब पता लगा एक आदमी का एक दिन की यात्रा है क्योंकि इतने ज्यादा सुविधा संपन्न हो गए हैं, तो पंजीकरण कराने के बाद आप आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने घर में शुद्धता रखें, जो मांस मदिरे का सेवन करते हैं उसका त्याग करें। सवा महीने का नियम आपको अपने घर में लागू करना है। अगर आपको लगता है कि मैं 5 दिन में कर रहा हूं तो उससे उसमें से 5 दिन माइनस करके सवा महीने पूरे करके आप अपने घर में वो नियम करें जो नियम है। फिर आप हरिद्वार आए, वहां से गंगा जल लें, उससे स्नान करें और वो जल लेके भी आप जा सकते हैं धामों में। और उसमें जो नियम जो है उसमें आपका भोजन, आपके कपड़े, मैंने बोला ना बिना सिलाई वाले कपड़े पहने जाते थे जो कि आज नहीं होता। आज आप पूरे धामों में देखिए वो नियम पारित कर नहीं सकते, अब तो जैकेट्स पहन के जाते हैं, सब कुछ पहन के जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा का दुरुपयोग ना करें। आप जितने शांत भाव से जाएं, आज के समय में जितने शांत भाव से जाएं, लोगों की मान सम्मान देते हुए जाएं, बुजुर्गों की मदद करते हुए जाएं, तो भगवान भी जो है वो उनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। और जो मंत्र आपके गुरु द्वारा दिए गए या केदारनाथ जी का जो विशेष मंत्र है उसका जाप करते हुए जाएं, ताकि आप जब तक वहां पे यात्रा में पहुंचे तो कम से कम आपके मंत्र वो पूर्ण हो जाए, और वो मंत्र जब वो पूर्ण हो जाए उनके दर्शन करें तो अपने घर पहुंचकर निश्चित तौर पे एक हवन जरूर करें।
4: जी, सबसे पहले किस धाम की यात्रा हमारे जो यात्री हैं उन्हें करनी चाहिए?
5: आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करिए, फिर केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद वापस आते हुए आप गंगा जी से वापस आप जा सकते हैं, नहीं तो अपने अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर कोई चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकता तो वो दो धाम के दर्शन एक वर्ष में कर लें, या उसमें भी नहीं जा सकता असमर्थता है तो वो अपना बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। बद्रीनाथ जी के बाद दर्शन करने के बाद जब वापस आए तो वो गंगा जी के दर्शन करते हुए केदारनाथ जी से संकल्प ले सकता है कि अगली बार आपके आशीर्वाद से मैं संभव हो सका तो पहुंच सकूं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि जवानों से ज्यादा बुजुर्ग लोग जाते हैं
4: जी।
5: और उनको तरह तरह की बीमारियां, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, और उनको डॉक्टरों ने मना किया है, तो वो हरिद्वार में गंगा जल लेके भी उनको जो है केदारनाथ जी की तरफ देखकर उनके हाथ जोड़कर उनसे आप वचन ले सकते हैं कि भगवान अगली बार इतनी शक्ति देना कि मैं आपके दर्शन

0: कर सकूं।
1: जी आचार्य डॉक्टर सुशांत राज जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता सुशांत राज से, जिसका आज का विषय था चारधाम यात्रा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व, और इनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा। किसान साथियों, हम जानते हैं कि नया मौसम आपके लिए केवल कैलेंडर की तारीख बदलने से नहीं आता, बल्कि नई उम्मीदों, नई योजनाओं और नई तैयारियों के साथ आता है। यही वह समय होता है जब हमारे किसान साथी आने वाले मौसम की संभावनाओं को देखते हुए अपने खेत को नई फसल के स्वागत के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं, क्योंकि खेती में अच्छी शुरुआत ही अच्छी पैदावार की पहली शर्त होती है ना? और ऐसा ही एक मौसम है खरीफ फसलों का, जिसके आते ही हमारे किसान साथियों की नज़र आसमान और सोच आसमान पर और सोच अपने खेत की तैयारी पर टिक जाती है। यदि खेत अच्छी तरह से तैयार होगा तो फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। सबसे पहले तो आप सबको खेत की जुताई पर ध्यान देना होगा। यदि गर्मी के मौसम में आपने गहरी जुताई कर ली है तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। इससे मिट्टी में छिपे कीटों और रोगों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और खरपतवार भी नियंत्रण में रहता है। खेत की तैयारी के समय गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग अवश्य करें। किसान साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि मिट्टी परीक्षण जरूर करवा लें, ताकि सही मात्रा में आप उर्वरकों का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। आपको अपने खेतों को समतल बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असमतल खेतों में बारिश का पानी कहीं अधिक और कहीं कम जमा होता है, जिससे फसल की बढ़वार प्रभावित होती है। साथ ही जल निकासी की भी उचित व्यवस्था करें, ताकि अत्यधिक जल भराव ना हो और फसलों की जड़ें सड़ने से बच सके। बुवाई के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीजों का ही चयन करें, और बुवाई करने से पहले बीजों का उपचार भी अवश्य कर लें। और आइए किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है एक और लोकगीत को सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान साथियों, जहाँ तक संभव हो तो अपने खेतों में जैविक खादों का उपयोग करें, रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें और कृषि वैज्ञानिक की सलाह से ही करें। जितनी ज़रूरत उतना ही प्रयोग करें। इसके साथ आप अपने खेतों में मेड़बंदी मजबूती से करें, जिससे बारिश का पानी खेत में संरक्षित करने में आपको मदद मिलेगी। आप फसल योजना पहले से ही बना लें, जैसे कि कौन सी फसल लगानी है, कितनी खाद की ज़रूरत होगी, ये सब अगर आप एक योजना बनाकर करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। किसान साथियों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि खरीफ की अच्छी फसल केवल समय पर बुआई से नहीं मिलती, बल्कि मिट्टी परीक्षण, गहरी जुताई, जैविक खादों का प्रयोग, जल निकासी की व्यवस्था, बीजोपचार और खेत के समुचित प्रबंधन से जैसी तैयारियां ही बेहतर उत्पादन की मजबूत नींव रखती है। तो आप भी अपनी फसल की तैयारियों में इन छोटी मगर उपयोगी बातों को ध्यान में रखकर ही खरीफ की फसल को बोएं और अच्छा उत्पादन पाए। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारियों से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। हमें अपने पत्रों व संदेशों के माध्यम से जरूर सूचित करें। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड 2480001। ईमेल है jagatkrishi@gmail.com। तो अब अपनी साथी दीपा बगासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में गौवाल जागों में 18,900 करोड़ डबलों की लागतल 26,000 किलोमीटर है ज्यादा सड़कों का निर्माण करेली। राज्य मंत्रिमंडल उत्तराखंड को पूरी तरह बटी साक्षर राज्य घोषित करना प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हेमकुंड साहिब यात्रा में उनवाल सभी श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्यालजोल बढ़ाई रखने की प्रार्थना कर राखी। और मेरठ बटी ऋषिकेश ताले प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना के लिए सर्वेक्षण काम झट शुरू होल। और अब समाचार विस्तारल। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर है ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेली। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के भीतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ है ज्यादा डबल आवंटित करी गई छन। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति अंदाज लगुणा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसलल की। बैठक में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग ले। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमानक भीतर अटकी परियोजनाओं में झट काम करना निर्देश दी गई छन। यमें विशेष रूपल कमजोर आदिवासी समूह बस्तियों पर ध्यान दी गई छू। राज्य मंत्रिमंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानकों के हिसाबल उत्तराखंड को पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिहाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भई बैठक में गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ोड़ा को उद्देश्य भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को ले मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल चारधाम यात्रा बाट में चलन वाल घुआड़ खच्चरों बीमा प्रीमियमक 20% हिस्सा राज्य सरकारक बटी वहन करी जानक प्रस्ताव को ले मंजूरी दी। ये अलावा उपनल कार्मिकों को समान कामक लीजी समान वेतन थे जुड़ी पात्रता की कट ऑफ तारीख में सुधार को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 को ले मंजूरी प्रदान करी। चमोली जिला कर्णप्रयाग क्षेत्र में हेमकुंड साहिब बटी लौटनी कुछ श्रद्धालुओं और वाकरूणी लोगों के बीच भई झगड़क बाद राज्य सरकार घटना को ध्यान में ले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हेमकुंड साहिब यात्रा में उणवाल सभी श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्यालजोड़ बनाई रखने की प्रार्थना कर रखी। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब देशक मुख्य आस्था केंद्रों में बटी एक छू जहां हर साल ठुल संख्या में श्रद्धालु दर्शनक लीजी पूजनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा छू। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक मर्यादाओं और स्थानीय परंपराओं का सम्मान कर बेर यात्रा करण चे। श्री धामिल कहा कि क्वेल प्रकारक झगड़ा उकसूण और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों थे बचन जरूरी छू। प्रदेश में राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्डक लीजी तय आय सीमा की समीक्षा कराली। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्याल अधिकारियों को यह एक लीजी समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना निर्देश दे रखी। देहरादून में भई विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्डक लीजी तय आय मानक बहुत पुराण हैगी जल कई पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने में कठिनाई होने। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं को नवंबर में बटी अटक्यू लाभांश एक हफ्ता के भीतर जारी कर दी जाल। उन्होंने अधिकारियों को उड़ वाली 30 जून ताले राशन बांटने की प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने का आदेश ले दी रखी।
2: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ, तो वो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन अपात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सत समय में सूचना नहीं देंगे और विगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी, तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: मेरठक मोदीपुरम बटी ऋषिकेशक लक्ष्मी और झूला ताले हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है रे। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के बीच मेरठ बटी ऋषिकेश ताले RRTS नेटवर्क का विस्तार में सहमति बन गई। यह की पूरी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए झट सर्वेक्षण कराई जल। प्रस्तुत छू एक रिपोर्ट।
4: प्रस्तावित योजना के अनुसार नयो रेल ट्रैक मेरठक मोदीपुरम स्टेशन बठे शुरू हैबेर मुजफ्फरनगर रुड़की और हरिद्वार हैबेर ऋषिकेशक लक्ष्मण झूला क्षेत्र तक पुजल। परियोजना के लगभग 72 किलोमीटर हिस्से उत्तर प्रदेश में और 78 किलोमीटर हिस्से उत्तराखंड में होल। नमो भारत ट्रेनक संचालन दिल्ली और ऋषिकेशक बीचक यात्रा बखत वर्तमान में 5-6 घंटे बठे घटबेर लगभग 2.5-3 घंटे रुणक संभावना छू। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और वांग जानिन के तेज सुरक्षित और आधुनिक परिवहनक सुविधा उपलब्ध होली। ध्यान देने वाली बात छू कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दगड़ मुलाकात कर बेर यो संबंध में प्रस्ताव सौंपी छी। आकाशवाणी देहरादून अकलीजी समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है पहली आज देहरादून स्थित अपन शासकीय आवास में अधिकारियों और कर्मचारियों दगर योगाभ्यास करो। यो मौक पर मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व में भारतीय योग की पुरानी परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई छू। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है बल्कि मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन का आधार ले छू। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों थे उड़ वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित हुणवाल योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ भीड़ भाग लेने की विनती करी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या हिस्से बने बेर स्वस्थ और निरोग जीवन की दिशा में कदम बनूं चें। चंपावत जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तले पुजोणा का उद्देश्य जनकल्याण म्यालों और शिविरों का आयोजन करी जानो। जिलाधिकारी मनीष कुमारल बता कि यो म्यालों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनना दगड़े अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनर लाभ पात्र लोगों तले पुजोण छू। उनुल कौकी चंपावत नगर पालिका दगड़े अलग अलग विकास खंडों में शिविरों का आयोजन शुरू

0: हैगो और यो शिविर ओण वाली 20 जून ताले जिला सभी 4 विकास खंडों और 5 नगर निकाय क्षेत्रों में आयोजित करी जाल। जिलाधिकारी नागरिकों थे प्रार्थना कर राखी कि उ तय तारीखों के अनुसार अपन क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पुजबेर अलग अलग सरकारी योजनाओं जद है जात लाभ उठा।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जन कल्याण मेला समस्त हमारे पूरे जनपद अंतर्गत चल रहा है। इसमें सम्मानित नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मांगे हैं, उन सभी का क्रियान्वयन घोषणा जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से किया जाना है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह है, आप वहाँ पे अपने जो आवेदन है उसको लेकर के आए और उसमें जो अधिक से अधिक लाभ जो है उसको प्राप्त करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में गौक जागो में 18,900 करोड़ डब्लों की लागत 26,000 किलोमीटर है जात सड़कों का निर्माण करेल। राज्य मंत्रिमंडल उत्तराखंड को पूरी तरबटी साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हेमकुंड साहिब यात्रा में उणवाल सभे श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्यालजोल बनाई रखने की प्रार्थना कर रखी और मेरठ बटी ऋषिकेश ताले प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना के लिए सर्वेक्षण काम झट्ट शुरू होल। ये कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आनंद राज और कल्पना की आवाज़ में फिल्म वेलकम का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और अगला गीत शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान की आवाज़ में है। फिल्म है ओम शांति ओम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है RNU का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे मानसी कापड़ी की अपण कला से आत्मनिर्भर बनने की कहानी से।

देवभूमि उद्यमिता योजना से मिली नई उड़ान से मानसी कापड़ी ने अपन कला को आत्मनिर्भरता का आधार बनाया है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति के भीतर कुछ करने का जज्बा हो और उसे सही दिशा एवं अवसर मिल जाए तो वह अपनी प्रतिभा को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद की युवा छात्रा मानसी कापड़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लक्ष्मण सिंह महार स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीबीए की छात्रा मानसी ने अपनी पारंपरिक कला को केवल शौक तक सीमित न रखकर उसे स्वरोजगार का माध्यम बनाया और आज वह अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। श्रोतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहती है। इसी सोच को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2023 से शुरू हुई ये योजना प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालयों और 5 विश्वविद्यालयों में युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप्स और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रही है। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या का समाधान हो सके। मानसी कापड़ी को बचपन से ही उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला से विशेष लगाव था। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाले ऐपण डिजाइन उसकी रचनात्मकता का प्रमुख माध्यम थे। वह समय समय पर आकर्षक ऐपण कलाकृतियां तैयार करती थी, लेकिन तब तक यह केवल उसका शौक था। मानसी को शायद तब यह एहसास नहीं था कि यही कला भविष्य में उसकी पहचान और आजीविका का माध्यम भी बन सकती है। वर्ष 2024 में मानसी ने देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत आयोजित द्विदिवसीय बूट कैंप में प्रतिभाग किया। इस प्रशिक्षण शिविर ने उसकी सोच को नई दिशा दी। यहाँ विशेषज्ञों ने छात्रों को बताया कि किस प्रकार किसी हुनर, कला या विचार को व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकता है। मानसी ने ऐपण कला पर

संचालन के विभिन्न पहलुओं की गहन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उत्पादों की बिक्री, ग्राहक प्रबंधन, वित्तीय योजना और विपणन रणनीतियों के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण हासिल किया। प्रशिक्षक और मेंटर डॉक्टर रुचिता पंगुरिया के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने होमेज वाइब्स नाम से अपना उद्यम शुरू किया। मानसिकी मेहनत और लगन को उस समय बड़ी सफलता मिली जब फरवरी 2025 में आयोजित देवभूमि उद्यमिता स्टार्टअप मेगा इवेंट में उनके उद्यम को 75,000 रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया। इस आर्थिक सहायता ने उनके व्यवसाय को नई गति दी। उन्होंने इस राशि का उपयोग उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, नए डिजाइन विकसित करने, प्रचार प्रसार और बाजार विस्तार के लिए किया। आज मानसिका उद्यम उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का सफल उदाहरण बन चुका है। उनके उत्पाद स्थानीय ग्राहकों के साथ साथ ऑनलाइन माध्यमों से भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। वर्तमान में वह प्रति वर्ष लगभग 80,000 रुपए के ऐपण उत्पादों की बिक्री कर रही है और अपने ग्राहक आधार का लगातार विस्तार कर रही है। मानसी कापड़ी की सफलता ये दर्शाती है कि यदि युवाओं को उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो वे अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि समाज और प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। श्रोताओं, देवभूमि उद्यमिता योजना ऐसे ही अनेक युवा सपनों को उड़ान देने का कार्य कर रही है और उत्तराखंड में उद्यमिता की एक सशक्त संस्कृति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, उत्तराखंड के लिए उम्मीद की एक नई किरण की खबर ये भी है कि अब मेरठ से उत्तराखंड के लिए नमो भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों का लंबे समय से देखा जा रहा सपना अब साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन यानी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों के बाद उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के बीच इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए जल्द ही सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। श्रोताओं, इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं और उच्च गति वाली इस ट्रेन को उत्तराखंड तक विस्तारित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड की आवश्यकता और संभावनाओं से अवगत कराया था। उनके प्रयासों और परिणाम स्वरूप अब मोदीपुरम से ऋषिकेश तक इस रेल सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्रोताओं, परियोजना को गति देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जबकि NCRTC ने भी अपने स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद अब लगभग 150 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के सर्वे और DPR निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार नमो भारत ट्रेन का नया ट्रैक मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से शुरू होगा। ये ट्रैक मुजफ्फरनगर से होकर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा और रुड़की, हरिद्वार तथा ऋषिकेश को जोड़ते हुए लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। प्रस्तावित रेल मार्ग का लगभग 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश तथा 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इस मार्ग पर आधुनिक स्टेशन, बेहतर यात्री सुविधाएं और तीव्र गति की परिवहन व्यवस्था विकसित किए जाने की संभावना है। श्रोताओं, इस परियोजना के पूरा होने से उत्तराखंड के पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। हर वर्ष चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। नमो भारत ट्रेन के संचालन से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली, NCR, मेरठ और उत्तराखंड के बीच व्यापारिक एवं सामाजिक संपर्क भी और मजबूत होंगे।

और इसी के साथ श्रोताओ उम्मीद की किरण के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8 बज रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज सुनिए ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत।
3: श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा को। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। ओरल हाइजीन है क्या?
4: ओरल हाइजीन मतलब आपका सारा मुंह, मुंह में आपके दांत आते हैं, मसूड़ा आता है, जीव आता है, सलाइवा आता है
3: जी।
4: उन सब की साफ सफाई और उन सब को स्वस्थ रखने को ओरल हाइजीन कहते हैं।
3: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन से हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है?
4: ओरल हाइजीन से हमारा स्वास्थ्य एकदम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं। तो आपको अपने मुंह का और ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज भी इससे रिलेटेड है।
3: डॉक्टर रीता, दांतों की या ओरल हाइजीन की बात करें तो इसको किस तरह से सही बना के रखा जा सकता है?
4: देखिए, ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें कम से कम। खाने में ज्यादा मीठे चीज ना खाया करें, पानी खूब पीजिए और डेंटल फ्लॉस का यूज किया कीजिए, अपने जीभ की सफाई किया कीजिए। और खाने पीने में ज्यादा जो आजकल बच्चे वगैरह खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, वो सब कम खाया करिए। जंक फूड्स कम खाना चाहिए और हेल्दी फूड्स पे ज्यादा आप जोर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
3: डॉक्टर रीता झा, अगर किसी की ओरल हाइजीन खराब है तो कैसे पता चलेगा?
4: देखिए, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में झंझनाहट होना, ये सब लक्षण होते हैं कि आपका ओरल हाइजीन खराब है।
3: कुछ कारण भी होते हैं ओरल हाइजीन खराब होने के?
4: अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन खराब होगा। मतलब आपको कैविटीज अगर होगी तो आपके दांतों में दर्द होगा, और आप दांतों में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। अगर मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो ब्लीडिंग होगी, मसूड़ों में सूजन होगी, इतने बार गालों में भी सूजन आ जाता है क्योंकि दांतों में कैविटीज होती है, उससे एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन ठीक रहेगा।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मुंह से बदबू आती है, तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए?
4: देखिए, बदबू आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में प्लाग है, मतलब पायरिया जिसको कहते हैं आम भाषा में, पायरिया मेन कारण है जिसकी वजह से बदबू आती है। कितने बार आपको अगर पेट में भी दिक्कत है तो आपको मुंह में बदबू आ सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसकी वजह से भी बदबू आती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मुंह से बदबू आती है तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके दांतों की सफाई करेंगे तो आपके मुंह से बदबू फिर नहीं आएगी।
3: आपने कैविटी की भी बात की थी।
4: हाँ जी।
3: क्या वजह है हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है?
4: कैविटी, देखिए, हमारा जो दांत है वो 3 परतों में बना होता है। एक होता है एनामल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। एनामल हमारा बाहरी परत है। कितनी बार क्या होता है, जैसे हमारा सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, मतलब 6.2 to 7.6 के आसपास का पीएच होता है उनका। पर जब पीएच कम होता है तो एनामल हट जाता है, तो जिसकी वजह से हमें कैविटी हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, खाने में जंक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे एनामल को इरोड करते हैं और हमें कैविटी होने के चांसेस होते हैं। प्लस बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे एनामल को इरोड करते हैं और उन पेशेंट्स में ज्यादा हो सकता है कैविटीज। तो बेसिकली आपको अपना पानी बहुत ज्यादा पीजिए, दांतों को ब्रश करिए 2 टाइम कम से कम, तो इससे आपके कैविटीज कम होंगे। और शुगरी फूड्स कम खाइए, मीठा, और स्पेशली जो दांत में चिपकते हैं, जंक फूड तो बहुत ही कम कर दें। जैसे आजकल बेसिकली बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो कैविटीज बहुत हो रही है और दांत के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो जंक बहुत खाते हैं। तो जंक फूड को जितना कंट्रोल करिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपके दांतों में कैविटीज कम होगी।
3: डॉक्टर रीता जी, आपने मसूड़ों में खून आने की बात की थी।
4: हाँ जी।
3: क्या वजह है मसूड़ों में खून आने के पीछे?
4: मसूड़ों में खून आने की वजह है कि मसूड़ों में मैल जम जाता है, जिसको हम अगर डेंटल इसमें गए तो उसको प्लाक कहा जाता है, प्लाक और कैलकुलस। धीरे धीरे वो जैसे प्लाक जो है वो मसूड़ों के अंदर जाने लगता है और वो मसूड़े ढीले करता है, जिसके वजह से मसूड़ों में खून आता है।
3: क्या करें हम ऐसा ताकि खून है वो बंद हो जाए?
4: आप अपने दांतों की सफाई 6 महीने में एक बार कराइए। खाने में आप विटामिन सी ज्यादा लीजिए, आप थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाइए, एप्पल भी खा सकते हैं। मतलब खान पान का भी अगर आप ध्यान रखोगे ना तो उससे आप गम स्ट्रांग होंगे। अगर आप अपने गम्स को स्ट्रांग बनाओगे तो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स कम होंगे।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि मसूड़े में सूजन आ जाती है ओरल हाइजीन सही न होने के कारण, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें सूजन न आए?
4: देखिए, मसूड़ों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कितनी बार आपकी कुछ मेडिसिन चलती है, एपिलेप्सी वगैरह, उसकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आता है, ठीक है। पर मेन कारण है मसूड़ों में गंदगी जमा होना, जिसको आप पायरिया कहते हो आम भाषा में। जब लोगों को पायरिया होता है तब ज्यादातर मसूड़ों में सूजन आता है, मेन कॉज हम अगर डेंटल मान के चले तो।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रश करने की बात की थी कि कम से कम 2 बार ब्रश करें, कब करें ब्रश 2 बार?
4: देखिए, सुबह 1 बार और 1 बार रात को सोने से पहले। और ब्रश जो आप यूज करोगे वो हार्ड ब्रश यूज मत करिए, और दांतों पे ब्रश को रगड़िए मत, हल्के हाथों से घुमा घुमा के करिए। अगर आप ब्रश को ज्यादा जोर से दांतों पे रगड़ते भी हो तो भी आपके दांत की परत हट जाती है और फिर आपको झंझनाहट की दिक्कत होती है। सेकेंडली, आप जो ब्रश यूज करते हो वो सॉफ्ट ब्रश यूज करो, हार्ड ब्रश यूज मत करो। और ब्रश को भी आप 3 से 4 महीने में एक बार बदलो, प्लस आप डेंटल फ्लॉस का यूज करो ताकि 2 दांत के बीच में भी आप दांतों की सफाई कर सको।
3: डॉक्टर साहब, क्या ब्रश करने का भी कोई तरीका होता, कैसे करना है, रगड़ना है, गोल गोल घुमा के करना है?
4: आप 45 डिग्री पे गोल गोल घुमा के धीरे धीरे करिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको आधे घंटे तक ब्रश करना है, 3 से 4 मिनट काफी है, पर हल्के हाथ से घुमा घुमा के। ये नहीं कि आप सीधा सीधा जोर जोर से दांतों पे रगड़ रहे हो, उस वो आपको नुकसान देता है।
3: डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट कोई भी ले सकते हैं?
4: हाँ, अगर आप फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट लोगे तो ज्यादा बेटर है, पर टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो कोई भी। पर सेंसिटिव टूथपेस्ट आप नॉर्मल टूथ पे मत करिए। एड्स देख के कितनी बार ऐसा होता है ना, आपने सेंसोडाइन यूज कर लिया। अगर आपको झंझनाहट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सेंसिटिव टूथपेस्ट मत यूज करो।
3: जो लोग डॉक्टर रीता जी सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो यूज कर रहे हैं तो कितने समय तक करें?
4: पेस्ट को आप यूज कर सकते हो जब तक आपको झंझनाहट की दिक्कत खत्म ना हो जाए, पर अगर एक बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आप यूज मत करिए।
3: डॉक्टर रीता जी, डेंटल फ्लॉस की बात आपने की थी, डेंटल फ्लॉस को यूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं क्या?
4: हाँ जी, वो एक धागा टाइप का होता है, आप दोनों हाथों से इसे पकड़िए और 2 दांत के बीच में लेके उसको ऊपर नीचे कीजिए। उससे आपके दांतों के बीच में जो भी डेब्रीज फंस जाता है वो निकल जाता है। तो कितनी बार क्या होता है ना, 2 दांतों के बीच में कैविटी हो जाती है, उसका मेन कॉज ये होता है कि वहाँ पे खाना फंसा रह गया, आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें रेशे हैं, तो वो फंसा रह जाता है, तो बहुत बार ब्रशिंग से वो नहीं निकलता है। तो आप डेंटल फ्लॉस का यूज रोज करिए, प्लस आप पानी बहुत पीजिए, जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा है, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है।
3: डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डेंटल फ्लॉस का यूज करने से हमारे जो दांत है उनके बीच में गैप अगर नहीं है तो भी बन जाएगा, कितना सच है ये?
4: नहीं नहीं, ये एक मिथ है। डेंटल फ्लॉस से आपको कभी भी गैप नहीं बनता है। कितनी बार क्या होता है, जो आप पायरिया समझते हो उसमें क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत सारे कचरा मतलब हार्ड कोट आ जाते हैं, जिसको हम प्लाक कहते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो ये 2 दांत के बीच का स्पेस भी लेता है और गम्स को भी बहुत सूजन प्रोवाइड करता है, तो उसके वजह से आता है। कितनी बार आपको एज के साथ भी आपके दांतों के बीच में गैप आता है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से आता है, फ्लॉस की वजह से कभी गैप नहीं आता।
3: डॉक्टर साहब, क्या ओरल हाइजीन को बनाए रखने में माउथ वॉश होता है, उसका भी कुछ यूज है?
4: आप माउथ वॉश यूज करिए। मैंने अभी आपको बताया ना, कितने बार क्या होता है ना, जो डेब्रीज होते हैं दांतों के बीच में फंसे रहते हैं तो आप ब्रश से नहीं निकाल पाते हो, तो आप अच्छे से जोर से कुल्ला करोगे तो उससे आपको फायदा होगा। प्लस उसमें फ्लोराइड और बहुत सारे ऐसे चीज होती है जो आपको मदद करता है, वो सब मेडिकेटेड जो माउथ वॉश होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो होते हैं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला इस तरह की तमाम चीजें खाते हैं, क्या इनसे भी हमारी ओरल हाइजीन प्रभावित होती है?
4: हाँ जी, ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है, क्योंकि ये एक तो वो मसूड़े में उसे रखते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आपके गालों में भी प्रॉब्लम होगा और उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सलाइवा के साथ मिलके आपके शरीर के अंदर जा रहा है, सलाइवा से बॉडी में मतलब खून में जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या सब कुछ आ सकता है। ओरल कैंसर का मेन कॉज यही है। तो ये तम्बाकू और ये सब जो भी पान मसाला है वो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से।
3: डॉक्टर रीता झा, बच्चों में जो ओरल हाइजीन की अच्छी आदतें हैं, कोई भी माता पिता या गार्जियन है वो कैसे विकसित कर सकता है?
4: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो मदर्स फीड पे रहता है, तब आप वाइप लेके उसके गम्स को साफ कर सकते हो। जब उसका पहला दांत आता है तब से आप उसको हल्के से ब्रश करो, जो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे दांत आते हैं और जब वो खुद करने लायक हो, केपेबल हो जाता है, तो कम से कम 6 से 7 साल तक माँ के गाइडेंस में ब्रश करना चाहिए। और जितना जल्दी आप ब्रशिंग की हैबिट डलवाओगे बच्चों में उतना अच्छा है, और कम से कम 2 बार। सेकेंडली, बच्चों को आप चॉकलेट, स्वीट्स जो भी है वो जितना कम दें उतना अच्छा है, पर अगर आप खिलाते हो तो कम से कम उसके साथ कुल्ला जरूर कराइए और रात को ब्रश करवाइए।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। रात के 8:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
5: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
6: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
7: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी, और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
6: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
7: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहे, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
6: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
7: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
6: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
7: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो हैं, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
6: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
7: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी MSMEs भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
6: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
7: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
6: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
7: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
6: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
7: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट GDP ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल GDP के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, community participation and green development so that the northeast states are integrated into India's growth story and when they do that they also retain their unique identity.
6: Thank you so much sir.
7: Bahut bahut dhanyawad.
5: बारह साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer is Shishir Sena, Journalist.
9: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco and it's a pleasure to have you on the show.
10: Thank you very much.
9: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
10: So I think a lot of positives happened and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for air transport, add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with an outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force multiplier. The third I would call is a factor social stability. I think while we do all this, if social stability is not there, it is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crore were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at the railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. For example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into productive economy, thus creating jobs. So again, that 12 lakh crores of stress debt were resolved. I think in addition to these three broad areas, which I explained, which is frictionless, force multiplier and social stability, factor stability, social factor stability. There's one key theme the government has done in the last few years, looking at opening India and bringing India to the world and bringing world to India through free trade agreements, through trade integration. And this has certainly opened up new markets for us that has allowed us to be resilient even when there were challenges on many, many fronts.
9: Okay.
10: For example, the India-UAE trade has already crossed 100 billion. Who would have thought UAE we would have 100 billion trade? And the ambitious targets which are being set for the India-UK deal, the India-EU deal, India-Australia deal also has been signed. New Zealand is in the works. In addition to that, I think the biggest of them all, the India-US deal, I think we are all working very hard to...
9: Okay. So you have given a very comprehensive details about the economic activities. And if I just sum up the answer which you have given, all the three F has translated into what we call as the faster growth for the economy. Now, coming to one big question, that how India Inc. is confident about making big investment in this fast process of economic growth?
10: So I certainly think if you look at the data which we have for the last 3 years, India Inc. has initially, of course, the investment, a lot of the investment heavy lifting happened from the government side through public investments. But I think the last 3 years, the private investment has certainly picked up. Let me just take an example of steel sector, which I think the largest of the investments are happening in the private sector. I think we are already 220 million tons. And by 2030, we will be 300 million tons. It's a massive investment program underway. So many of these investments have actually been cleared 2-3 years ago, and they're all under implementation. And as you would, if you look at the mobile phone exports, that entire investment has happened in the last 2 years. And we have emerged as the second largest exporter of mobile phones out of this country. From we were, I think, down at 10th or so at some point. Okay. So each one of them, I think we've done a taken leap. When I say taken a leap, it is not only the fact that investment is in place, the investment is at a scale which is very high.
9: Okay.
10: Which means no longer investing small, we are investing at a larger scale.
9: Mr. Mukundan, when we talk about India Inc. is making investment, as you rightly mentioned, that during last 3 years, we have seen good growth and also good numbers. One of the big issue from the India Inc. is about the employability. Whenever you ask for people, are they really good for your sector or are they good for your company or not? Do you see the skilling program which has been introduced by Modi government has been helping you in a big way to getting employable people rather than just the people?
10: I think it's a very important question. I think we can't just say that, you know, we need to get people, we need to get employable people. TII itself, I think, runs about 60-odd model career centers. We have running close to about 12 to 14 of these skilling centers as part of the industry. And what we do focus on is to make sure that the people who come out not only have a degree with them, but also in addition to degree are employable in the shop floor or doing the productive work. And that has come through several schemes of the government, including the scheme in terms of making sure that internship program, which is the new one which the government has introduced, where graduates and people who are about to graduate can come and intern with the company, not to get job, but to get the experience of real work life. And that sort of prepares them to go and join the company much easily. So this has been added on top of what we used to have in the past, which is apprentice training program and several programs. And I fully agree with you that we have to focus in, when I say social factor of social inclusion, we need to focus on employability and skilling. But in addition to that, I want to add one more point, Shishir. I think this is about whole startup ecosystem, innovation ecosystem, where we are not just promoting people who are looking for jobs, who are job creators. And I think if you look at the fundamental focus of the government in terms of the Mudra scheme, also the new RDIF program, which has come for innovation, where government is giving grants to startup companies, these are all great steps to make sure that we just don't focus on job creation, we also focus on job creators.
9: Now, coming to one of the ambitious program of this government is the PLI schemes in various sectors. If I can remember correctly, it is more than a dozen sectors where we are seeing PLI scheme. Among these sectors, which one you think has given much more than desired and which one has not given what was expected?
10: Any scheme, Shishir, I think needs to be managed in a way that identify and we modify and we nuance it as we implement. I think it can't be a static that we launch. So I think one of the good things with the government has been the engagement with government to sort of make sure that it's relevant for the time and relevant for the task it has to do. At least the way we look at PLI scheme is basically a risk reduction process. It is not about giving subsidy to industry, but you know, when industry does big investments, there are risks associated with it and different industries have different types of risk associated and government stepping in and ensuring that the risk is taken care of enables entrepreneurs and companies to invest. If you look at one of the big success stories has been electronics, massive growth. If you look at the mobile phone and also electronic exports, which is happening, I think it has really brought us pretty much in the whole element of what I would call as countries to contend with. The other one, which I'm very hopeful will be great success, is semiconductor. I think we cannot depend for chips on another country. Chip sovereignty is as important as energy sovereignty, as important as food sovereignty. We always used to talk about food security and food sovereignty, but I think now the war has made sure that we need to look at energy sovereignty. In addition to that is the data and data processing sovereignty, which is also important because data is a new oil, or the future oil, as we call it.
9: So you talked about these three sectors, but if I talk about the sectors where we still have to see a success of PLI scheme, what kind of changes you think should be done in those sectors to make PLI much more effective in those sectors? And also, please mention about the sectors where the PLI has not given the desired result.
10: I think if you fundamentally look at the PLI scheme where, as I mentioned, where we need to add some more improvement, I think we need to focus on what is the element of risk we are not addressing. And I think this would vary from sector to sector. The second piece, which I would also say, which we need to do a lot, work at the center has really happened well, but a lot of work needs to happen at the state level where the projects are getting implemented. And those delays really create issues for all of us. So where I think there's a PLI scheme, a lot of projects are on the way, and they would probably take shape as we work our way through. For example, if you look at solar cell, I think India cannot continue to just import solar cell from our northern neighbor. We need to have domestic capacity. If you look at the PLI scheme for battery and battery storage, these are all items where I think the government has initiated the step, but I think we need to do more to ensure that those investments take shape and move forward.
9: Okay, now coming to the infrastructure development, and where we have seen that during last 4 to 5 years, government has made good progress in the terms of capital expenditure. And it is always said that when you are putting money of 1 rupee under the capital expenditure, it gives you a desired result of more than 3 rupees or 4 rupees. But at the same time, it also adds competitiveness to you as an industry. How this infrastructure development has added strength to your competitiveness?
10: So clearly, it's a great point you've raised. See, the point about where India needs to be competitive, in addition to several processes which government is trying to sort of remove the roadblock and engaging with states to be more, improve the ease of doing business, speed of doing business, is the energy cost and logistic cost. I think I did spoke to you about Sagarmala project, the Bharatmala project, these two projects which are massive investments in highway and port. Our big bottleneck to grow forward in terms of, I would say, our exports is actually going to be our port capacity, is going to be our road logistic capacity. You know, you just have to go in the highway between Baroda and the Hague to know that the 6-lane highway is now looking completely packed. Who would have thought when it was constructed, there'll be so much traffic on that. We probably need 2 or 3 more lanes in those highways. So in India, we fundamentally need to continue to invest in infrastructure. We need to continue to be more competitive. We had done a study between India and China. There's approximately 6% more competitiveness they have got in logistics and 6% in energy. Both, if we can get address it, we will be truly competitive vis-a-vis our northern neighbor, who is our only big competitor in manufacturing.
9: Now, coming to the investment part, from the foreign people, foreign investors. You talk to a lot of foreign investors. What kind of sense you are getting from them about investing in India?
10: So I think they are very excited. India is a large market. India is also one of the fastest growing markets. So they would want to come here. I think what we need to do for them is to sort of create kind of chauffeur service for them, because every country is different nuance, different elements of how business is done. I think that is something government is beginning to do. For example, creating key account managers who do end-to-end. Some states have done very well. For example, Tamil Nadu has got guidance, which does a lot of work in terms of engaging with investors to make sure their journey inside is. Gujarat has done exceedingly well in making sure the similar index B, as they call it, I think has been working very, very sure, working closely with investors. All states have to do this.
9: But one thing we have seen, that we have a good gross FDI number. If I go by the FY26 number, it is around $95 billion. But net number is just less than $7 billion. What more to be done? I mean, you talked about the coordination and the better coordination between the state government and the central government. But apart from this, what more can be done to have the net FDI at this higher level?
10: So I think this piece about gross FDI is the right metric to measure, because that is the money coming in. And, you know, when investors want to have made enough returns, they take the money out. At that time, we cannot say don't take the money out. Sometimes you get the net FDI number, which is very challenging. But I think as companies, sort of more companies come after this wave is over, I think the

0: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। रात के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंकोमा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़ी, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी

0: 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया।

0: its relationship. Thank you.
1: Thank you.
2: You are listening to a discussion on Prime Minister's visit to France, deepening India-France strategic partnership. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Manas Pratim Bhuyan, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पहला गीत साधना सरगम और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में है। फिल्म का नाम है खुद गर्ज़।

0: पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। रात के 10 बजने को हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।